FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड

0: पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

सभी सुनने वालों को प्रातः वंदन और अभिनंदन। आइए श्रद्धा और प्रेम से समर्पित हो श्री हरि के चरणों में और आरंभ करें भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी, जय रघुनंदन जय श्री राम।

ये है आपका अपना चंबल चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो निःशब्द होते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। हमारी संस्कृति में पतित पावनी गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। आइए करते हैं माँ गंगा का यशोगान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। जिसके मन में बसते हैं राम, उन पर कृपा करते हैं हनुमान। आइए सुनते हैं हनुमान भजन।

ये था हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम को अपने श्रीमुख से सुशोभित किया पंडित भीमसेन जोशी, मन्ना डे, रविन्द्र साठे, ओम व्यास, नितिन मुकेश और साथियों ने। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को यहीं देते हैं विराम।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मुख्य कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन, विषय है बोए पेड़ बबूल के।
1: तटस्थ भाव से शुभ कर्म करना ही श्रेयस्कर है। मानव को जीवन में कर्म तो करना ही पड़ता है, फिर शुभ कर्म ही क्यों ना करे। शुभ कर्मों से ही वर्तमान

OTT प्रसार भारती का OTT वेव्स। इसके अलावा आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता श्री पुष्पेंद्र शर्मा से। बातचीत का विषय होगा सेवा का दूसरा नाम नर्सिंग। इसके अलावा आप जान पाएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में और विज्ञान धारा में आपको बताएंगे एटॉमिक क्लॉक के बारे में। किसान भाई सुनेंगे उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे। इसमें चर्चा का विषय होगा फसल अवशेष प्रबंधन। इसके अलावा आप सुनेंगे भेंट वार्ता गर्मी में पशुओं में होने वाले सामान्य रोग और समाधान, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर घनश्याम मीना। इसके अलावा आपको PM मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही आप सुनेंगे मौसम, कल के कार्यक्रम, मंडी भाव और लोक संगीत। शाम 7:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत और रात्रि 8 बजे होगा चित्रपट संगीत। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाएंगे आप रात्रि 9 बजे, और रात्रि 10 बजे से श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। ये तो थी जानकारी आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राष्ट्रियसंसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनस्य निरन्तरप्रयासै भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जासंकटस्य प्रभावीरीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात् नीदरलैण्ड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार

0: विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा सरमा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं सरमा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ आइए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत, जो लेकर आया है ढेर सारी संभावनाएं, उम्मीदें, उमंग, उल्लास और उजास। तो हेलो, वेलकम एंड नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार कोटा। मंगलवार की मंगलमय सुबह है, 7:01 का समय है और अपने चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा अपनी रेडियो साथी अलका के साथ। मई महीने की 12 तारीख है आज। पूरे दिन में आपको करने हैं ढेर सारे काज, तो पूरे दिन की सही से प्लानिंग कर लीजिए। जरूरी कामों को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रख लीजिए और जो गैर जरूरी काम है उनको थोड़ा नीचे रखिए। और हाँ, इस लिस्ट को बनाने में अपने आप को जरा भी नजरअंदाज मत कीजिए या अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कुछ समय अपने लिए निकालना, अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। और साथ ही समय दीजिए अपनों को, क्योंकि आपके अपने अपने ही होते हैं। ये जो मानव जीवन हमें मिला है, ये बड़े संयोग से हमें मिलता है और इसमें सबका सहयोग भी जरूरी होता है, यानी ये सबके सहयोग से ही चलता है। तो अपने लिए और अपनों के लिए समय जरूर निकालें और साथ ही सबका सहयोग करते हुए, सबका साथ देते हुए, सबका साथ लेते हुए, मदद करते हुए इस जीवन को चलाते रहिए। तो हम भी चलते हुए, चलाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए बढ़ेंगे अगले पायदान की तरफ और साझा करेंगे आपके साथ आज का विचार। सबके बीच में रहना या महफिल में रहकर बोलना या फिर बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, ये एक साधारण सी बात हो सकती है, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबके बीच में रहते हुए कब बोलना है, कहाँ

बोलना है और कितना बोलना है, इस बात की समझदारी या विवेक हमारे अंदर आ जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जब भी बोलिए, सोच समझकर और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बोलिए। तो ये तो था हमारा आज का विचार, और अब कार्यक्रम में होगी गीत संगीत की बहार।

आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिन में तेज गर्मी पड़ रही है और तापमान बहुत अधिक है और आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है और इसके साथ ही तापमान के बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें कल का कोटा शहर का अधिकतम तापमान रहा 42.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27.4 डिग्री सेल्सियस। और आपको बता दें कि सूर्यास्त होगा आज शाम 7:06 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह

0: 5:43 पर।
1: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: आज है 12 मई और हर साल 12 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नर्सेज जो मरीजों की देखभाल करने में अहम भूमिका निभाती हैं, ये दिन उनके निस्वार्थ योगदान और समर्पण को सम्मानित करने का दिन है। हर साल ये दिवस अलग अलग थीम पर मनाया जाता है। ये पेशा ऐसा पेशा है जिसमें दिन रात सुबह शाम बिना किसी संकोच और डर के ये अपनी सेवाएं देते हैं। सलाम करते हैं हम सभी नर्सेज के जज्बे को। विश्व नर्स दिवस के अवसर पर आज हम आपसे बातचीत सुनवाएंगे हमारी नर्सिंग अधिकारी जो हमारी अतिथि हैं अभिलाषा जैनवीर जी से, और आपसे बातचीत का विषय है नर्सिंग एक सेवा कार्य, और आपसे बातचीत कर रहे हैं राजेश महावर। तो आइए हम भी सुनते हैं ये बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम नमस्कार कोटा। श्रोताओं आप जानते हैं सूचना और मनोरंजन के साथ बहुत सी जानकारियां इस कार्यक्रम में आप सुना करते हैं। आज एक विशेष दिन हम मना रहे हैं, इस दिन को हम मन से नमन करते हैं क्योंकि ये सेवा कार्य है। श्रोताओं आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्स दिवस मना रहे हैं और इसी विषय पर एक खास बातचीत हम कर रहे हैं, नर्सिंग एक सेवा कार्य। और आज इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं अभिलाषा जैनवीर जी। आप नर्सिंग अधिकारी हैं, जेकेलोन हॉस्पिटल गायनेक ओपीडी इंचार्ज हैं आप। श्रोताब आपकी बातचीत करवाते हैं। नमस्कार अभिलाषा जी।
3: नमस्ते राजेश जी,
2: बहुत स्वागत है आपका। और आज जैसा कि हमने श्रोताओं को बताया कि आज हम वैश्विक स्तर पर नर्सिंग दिवस मना रहे हैं।
3: जी हाँ।
2: आप कोटा में रह रहे नर्सिंग ऑफिसर हैं, बहुत ही मानवीय हृदय है आपका, सहृदयता आप रखते हैं क्योंकि नर्सिंग एक सेवा कार्य है।
3: जी हाँ।
2: और सेवा भाव जब हमारे भीतर होता है तब हम ये सेवा कर सकते हैं। अभिलाषा जी, इससे पहले कि हम इस विषय पर श्रोताओं को जानकारी दें, हम आपके बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी दिलवाना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में आने का आपने बचपन से ही ठान लिया था?
3: ना, बचपन से तो नहीं, थोड़े फैमिली हालात थे। फादर मेरे सन 84 में चले गए थे।
2: ओह।
3: मम्मा ने एज अ सिंगल मदर हम लोगों को बड़ा किया, हम तीन भाई बहन थे। मम्मा मेरी एनम स्टाफ थी, जेके लॉन में ही पोस्टेड थी
2: जी।
3: तो ठीक है, उनकी पारिवारिक जो भी स्थिति थी, जो भी था, उस हिसाब से वो हमें बहुत अपर लेवल की पढ़ाई नहीं करा सकती थी
2: जी।
3: फिर उन्होंने उस वक्त में मेरा जीएनएम में फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शंस होते हैं, तो मुझे जयपुर एसएमएस में ट्रेनिंग सेंटर पे एडमिशन मिला और मैंने जयपुर एसएमएस से नर्सिंग करी है
2: जी। बहुत ही नेक काम आपने किया और आपकी माता जी आपको बिल्कुल सही रास्ते पर लेकर आई और उन्होंने अपनी तरह ही सेवा भावी आपको भी बनाया। अभिलाषा जी, आज हम वैश्विक स्तर पर नर्सिंग दिवस मना रहे हैं, इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य आप हमारे श्रोताओं को बता सकेंगी?
3: नर्सेस डे 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो नर्सेस की फाउंडर कहा गया है,
2: लेडी विद द लैंप,
3: लेडी विद द लैंप, तो ये उनका जन्मदिवस होता है इस दिन पर 12 मई पर। और नर्सेस डे को मनाने का उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो नर्सेस हैं, जो निस्वार्थ

0: साथ अपनी सेवा दे रहे हैं, समर्पण दे रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों में वो लोग अपने परिवार से भी समझौता करके
1: जी
0: सेवा का कार्य जो कर रहे हैं उनको सम्मान देना इस दिन पर, यही उद्देश्य होता है कि 12 मई पे उन सबको हम सम्मानित करें, उनके किए हुए कार्यों को याद करें
1: जी,
0: यही उद्देश्य।
1: बिल्कुल, और हमारा भी यही उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हम अपना आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जिसे अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कोई और दूसरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके लिए सहृदयता की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने बताया
0: जी।
1: सप्ताह भर पहले एक और दिन हमने मनाया था और वो मिडवाइफ डे था।
0: 5 मई को मनाया जाता है मिडवाइफ डे,
1: जिन्हें हम एक बोलचाल की भाषा में दाई कहते हैं
0: जी, हाँ,
1: जो जो डिलीवरी में बहुत ही महती भूमिका अदा करती हैं।
0: हाँ जी
1: जी, उनके बारे में भी हम आप ही से अपने श्रोताओं को जानकारी पहुंचा दें।
0: 5 मई का भी उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी मिडवाइफ्स को, जो पुराने जमाने में दाइयों के रूप में जानी जाती थी, आजकल तो एक प्रोफेशन हो गया है, नर्सिंग की ट्रेनिंग दे दी गई है, एनम्स पोस्ट हैं, आंगनबाड़ियों पे पोस्ट हैं, तो 5 मई का भी यही उद्देश्य है कि उन लोगों को हम सम्मान दें, उनके कार्य को हम सराहना करें और उनको हम सम्मान दें और उनको हम याद करें, उन मिडवाइफ्स को, कि जो मिडवाइफ्स एक जच्चा जब प्रसव काल में होती है और जब वो अपने मुश्किल वक्त में आती है प्रसव के टाइम, उस वक्त मिडवाइफ्स उनके साथ रहती हैं, उस मुश्किल वक्त से निकलने में उनकी सहायता करती हैं, सुरक्षित तो उनका प्रसव कराती हैं और प्रसव के पश्चात वो बेबी का ख्याल रखती हैं कुछ दिनों तक।
1: ये भी बहुत महत्व की बात होती है,
0: तो
1: क्योंकि
0: ये बहुत जरूरी है
1: जी,
0: तो इसीलिए वो सम्मान की अधिकार रखती हैं, सम्मान का।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो नवीन रूप से जो माता बनी है उनको उतनी जानकारी होती नहीं
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: और जो दाई होती हैं, जो मिडवाइफ्स होती हैं, उनको पूरा अनुभव होता है जीवन का और वो एक नई संतति को जो जन्म लेता है जीवन
0: जी, जी।
1: उनको वो सशक्त बनाते हैं कि वो किस तरह से अपने जीवन में आने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी छोटी जो संघर्ष की दुनिया होती है उससे वो निजात पा सके, उससे वो बाहर आ सके जी। नर्सिंग ऑफिसर आप हैं कोटा शहर में, और ये जो आपका जो कार्य होता है वो कोटा शहर में किस तरह का कार्य है?
0: मैं शुरू से गायनिक डिपार्टमेंट में रही, मेरी पोस्टिंग भी जेके लॉन में हुई, जनवरी 2000 में मैं पोस्टेड हुई, मैं शुरू से गायनिक में किया, थोड़े दिन मैंने पीडिया में भी काम करा है शिशु विभाग में, लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम गायनिक में रहा, गायनिक वार्ड्स की इंचार्ज रही, फिर अभी एट प्रेजेंट मैं गायनिक ओपीडी इंचार्जशिप में हूँ। ओपीडी में हम जानते हैं हम डायरेक्ट पब्लिक के टच में रहते हैं, एक भीड़ को हैंडल करते हैं
1: जी।
0: और मैं यही मानती हूँ कि एक अच्छे नर्स होने के लिए आप में कुछ क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं, आप में करुणा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और साथ में आप में एक क्लिनिकल शिक्षा होनी चाहिए कि आप जल्दी से सब ऑब्जर्व करें, परिस्थितियों को हैंडल करें और लोगों की सेवा करें।
1: बिल्कुल,
0: ये सब गुण वाली ही, जिसमें ये सब गुण होंगे वो एक अच्छी नर्स बन सकती है, मैं ये मानती हूँ
1: जी। अब आपसे यहाँ हम ये भी जाने कि जब एक नवविवाहित युगल होता है, वो जब अपने फैमिली को प्लान करता है और जब महिला गर्भ धारण करती है, उसके बाद में डॉक्टर्स के निरंतर वो संपर्क में होती है, डॉक्टर से निरंतर संपर्क के बाद उनका आपसे किस समय वास्ता पड़ता है?
0: हम लोगों के यहाँ ओपीडी के अंदर ही एएनसी डिपार्टमेंट है
1: जी,
0: एंटीनेटल चेकअप कहते हैं उसको, अंडर वो ओपीडी ही आता है, वहां पर 3 महीने खत्म होते ही जच्चा आती है और उसका एक कार्ड बनाया जाता है, सरकारी कार्ड बनता है हमारे यहाँ, एएनसी कार्ड बोलते हैं, तब वो हम लोगों के टच में आ जाती है पेशेंट जच्चा, उस टाइम उसकी सारी जांचें होती हैं, जो भी प्रोसेस हैं वो होते हैं, उस कार्ड का में पेशेंट का बीपी और रेगुलर जो भी उसके चेकअप्स हैं वो होते हैं कि वो रिस्कफुल फैक्टर की तरफ तो नहीं जा रही और सब कुछ, फिर उसकी उस कार्ड में पर मंथ विजिटिंग होती है हॉस्पिटल की, पेशेंट्स फिर हमारे टच में रहते हैं
1: जी, और आप उन्हें फिर निरंतर जानकारियां देते रहते हैं कि अब उन्हें क्या क्या करना है, किस तरह से
0: हम उन्हें जानकारी देते हैं, हमारे यहाँ काउंसलर्स बैठते हैं तो वो बिल्कुल टच में रहती हैं स्टाफ के डॉक्टर।

0: उसके सबके।
1: जी, अब आप जब यहाँ हैं तो वो जिन्हें आपसे वास्ता पढ़ने वाला है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी?
0: उन्हें मैं यही कहूंगी, एक सुरक्षित प्रसव के लिए आप एक रेपुटेड सरकारी अस्पताल चुने, क्योंकि आज एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम किसी भी विषम परिस्थितियों को, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे जच्चा या बच्चा को हानि होने वाली हो, हम पहले से ही उसको आभास कर लेते हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है अगर पेशेंट हमारे टच में है तो। तो आप अपना प्रसव सुरक्षित रूप से, सुरक्षित जगह, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पर एजुकेटेड टीम हो, डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, वहीं पकड़ आए।
1: आपने बताया कि एक नर्सिंग स्टाफ को बहुत सहृदय होना चाहिए, उनको सहनशीलता रखनी चाहिए। ऐसे में जब लोग परेशान होकर के, अपनी बीमारी से त्रस्त होकर वहां आते हैं, बड़े दूर गांव से भी आते हैं, तो ऐसे में उनकी आपसे क्या अपेक्षाएं होती हैं? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी भी उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं।
0: देखिए, हॉस्पिटल में हमेशा एक परेशान व्यक्ति आएगा
1: जी,
0: एक जरूरतमंद आएगा। ये चीज हमको, हमारा माइंडसेट रखना है कि वो नेचुरल है, वो परेशान है, तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा
1: हार्श हो जाए,
0: हैश हो जाए। हम लोग ये दिमाग में रखना चाहिए, उसके लिए हमें धैर्य रखना है। और अगर वो परेशान है और अगर वो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा है वो, तो हमें उसको सुनना है धैर्य से, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि जैसे आज वो गायनिक ओपीडी में अगर कोई पेशेंट अपने अटेंडेंट को सबको लेके आता है, तो अटेंडेंट तो वैसे ही पेशेंट की स्थिति से अटेंडेंट भी थोड़ा सा उग्र रहता है।
1: जी, जी, जी।
0: क्योंकि एक तो भीड़, ऊपर से उसको देख के कह दिया जाएगा आप वहां लैब में जाओ, आप उधर एक्सरे में जाओ, आप फलाना रसीद कटा के लाओ, इस जांच की ये करो, तो अनजान जगह पर उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भीड़ में। अगर वो हमारे टच में है तो हम तुरंत उसे बताते हैं, आप उस विंडो पे जाएं, आप इधर ये काम करें, अभी आपके पेशेंट की जरूरत नहीं है, आप इसको बिठा सकते हैं, आप खुद रसीद कटा लें। हम लोग उसे गाइड करते हैं
1: जी।
0: और मैं मानती हूं कि होता है ऐसा, कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट के अटेंडेंट उग्र हो जाते हैं, तो हर कोई अपना आपा खो सकता है विषम परिस्थितियों में। लेकिन जिसको बहुत जल्द जरूरत है चीजों की, फर्स्ट एड की, तो हम उनका साथ देते हैं। और पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में आते हैं तो हम उनसे बस इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो सफाई का ध्यान रखें, इधर उधर थूके नहीं
1: जी, जी।
0: और इधर उधर कचरा ना फैलाएं, क्योंकि हम जो दिन रात सफाई और जो व्यवस्था करते हैं वो केवल आप लोगों के लिए ही करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बस सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ जच्चा बच्चा दोनों आ रहे हैं। और ऐसे बच्चा, छोटा बच्चा, जच्चा, वो जल्दी इन्फेक्शन पकड़ेंगे, आप जगह जगह थूकेंगे, गंदगी फैलाएंगे, पानी फैलाएंगे, जच्चा भी स्लिप हो सकती है
1: जी, जी।
0: तो बस आप अपना सफाई का विशेष ध्यान रखें, बस हम यही कहेंगे।
1: और वहां पर जो आने वाले हैं वो आप ही के परिवार के एक सदस्य हो सकते हैं, इसलिए
0: तो
1: उस बात में भागीदारी करें, सफाई व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर निभाएं जी। अभिलाषा जी, जब हमने आपसे पूछा आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने तक का जो सफर है वो आपके मास्क के रास्ते होकर गुजरता है, तो ऐसे में आपकी माता जी ने जरूर विचार किया होगा कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी तो है, इस दौर में आकर इस ह्यूमैनिटी का कुछ परिचय आपने भी दिया। आपने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स नाम की एक सोसाइटी का निर्माण किया है, उसके बारे में बताइए जो कि आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है।
0: ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स की एक संस्था है जो हमने सन 2023 में स्टार्ट करी थी। हम लोग 10 नर्सिंग ऑफिसर्स इस चीज को लेके चले थे। हमने अपनी मासिक आय में से एक अंशदान निकालना शुरू करा, बहुत नॉर्मल अंशदांश, और उसको हमने कलेक्ट करके हमने जरूरतमंद बच्चे, मूक बधिर बच्चे, नारी निकेतन में जरूरतमंद लड़कियां, महिलाएं, हम उन लोगों को, उनकी जरूरतों को समझकर उनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करते हैं। आज हम 10 लोगों का कारवां जो चला था वो 10 से हमारा 150 से 200 पे हमारे सदस्यों का कारवां पहुंच गया है, और वो सब नर्सिंग ऑफिसर्स हैं।

0: और सब सेवा भाव दिल से काम करते हैं। और जब भी हम लोग फ्री होते हैं या ऑफ होता है तो हम, मैं ये समझती हूँ, हम शॉपिंग मॉल्स और यहाँ घूमने की बजाय हम जरूरतमंदों के पास अपना टाइम गुजारें, उनकी ज़रूरतों को समझें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। हम कर सकते हैं, हमको ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो वो हम पूरा करें और उनके साथ खड़े रहें, उनको हिम्मत रहेगी।
1: बहुत ही
0: तो
1: बात सही है।
0: ये संस्था, बस हम लोग यही, इस संस्था के माध्यम से हम इसको यही चाहते हैं कि ये संस्था हमारी आगे बढ़े और हम जरूरतमंदों के साथ रहें। हमारे इसके संस्थापक रामचरण महावर जी हैं, हमारे संरक्षक दीपक शर्मा जी हैं जो RNU के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष पोस्ट पे मैं हूँ, हमारी कोषाध्यक्ष हैं मिसेस प्रभा पात्रे जो कुनाड़ी डिस्पेंसरी पर हैं। प्रभा पात्रे जी के लिए बताना चाहूंगी, वहाँ कुनाड़ी डिस्पेंसरी पे भी वो बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ ह्यूमिनिटी के साथ। क्षय रोग के जो रोगी हैं वो उन्हें अडॉप्ट करती है
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: फिर उनका, क्योंकि क्षय रोगियों को एक डाइट की जरूरत होती है,
1: जी।
0: वो उनको पूरा मासिक उनका राशन भरवाती है जो उनकी अच्छी डाइट के लिए होता है और वो उनको डोनेट करती है ह्यूमिनिटी के साथ
1: वाह
0: हमारी संस्था के थ्रू।
1: जी।
0: 2024 जनवरी में हमने जेके लॉन में ही, जेके लॉन के मरीज और उनके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हमने एक भोज रखा था जनवरी में, जिसमें हमने 5,000 लोगों को, MBS जेके लॉन के मरीज और उनके रिश्तेदारों को हमने खाना खिलाया था।
1: जी
0: बस ईश्वर यही है कि ईश्वर हमारे साथ रहे और हम जरूरतमंदों के साथ हमेशा खड़े रहें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और ये जैसा कि आपने बताया कि निस्वार्थ सेवा भाव है ये, कि हम इंसानों की सेवा कर सकें, प्राणी मात्र की हम सेवा कर
0: जी
1: सकें, तो ऐसे में आज का ये जो दिन है, आप सभी के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये दिन है। और ऐसे में आप आकाशवाणी आए और आपने अपने जो कार्य हैं उसके बारे में श्रोताओं को बताया, जिससे कि श्रोता भी जागरूक हो सकें। अभिलाषा जी, आज आपके साथ हुई ये अत्यंत आवश्यक लेकिन मार्मिक जो बन पड़ी बातचीत, ये बहुत ही सराहनीय रहेगी और हमारे श्रोता इस बातचीत को बहुत समझेंगे कि नर्सिंग एक ऐसा कार्य है जो केवल सेवा का कार्य है, इसलिए उनका सम्मान करना परम आवश्यक है। आप आकाशवाणी आए और इतनी महत्व की बातें आपने कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
0: धन्यवाद राकेश।
2: अभी आप नर्सिंग अधिकारी अभिलाषा जैनवियर जी से ये बातचीत सुन रहे थे। बातचीत का विषय था नर्सिंग एक सेवा कार्य, और आपसे बातचीत कर रहे थे राजेश महावर।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। और श्रोताओं, चलते चलते आपको कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचा दें तो आपको बता दें कि जेईई एडवांस 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो जो देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड कल यानी सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपनी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और समय रहते इस एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर दें और आपकी परीक्षा के लिए आपको हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। एक और सूचना आप तक पहुंचाते हैं। अजमेर से कोटा के बीच एक नई बस सेवा शुरू की गई है। जी हां, बूंदी डिपो ने यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर से कोटा तक नई बस सेवा शुरू की है। यह बस रोज सुबह 4:25 पर अजमेर से रवाना होकर नसीदाबाद, सरवाड़, केकड़ी, गुलगांव, देवली, हिंजौली और बूंदी होते हुए कोटा पहुंचेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए ये सेवा शुरू की गई है और इसे आगे और बेहतर परिवहन सुविधाओं के रूप में बढ़ा दिया जाएगा। और श्रोताओं, आपसे बातें करते करते कार्यक्रम का समय बिल्कुल समापन की ओर आ चुका है। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है तो जब तक कोई जरूरी काम ना हो तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। यदि निकलना भी पड़े तो कुछ खा पी करके निकलें और अपने साथ पानी की बॉटल, स्कार्फ, टोपी या स्वाफी लेकर के जरूर निकलें और अपने भोजन को हल्का रखें और छाछ, आम पन्ना या नींबू पानी समय समय पर पीते रहें जिससे शरीर में तरावट बनी रहे। और तरावट के फल यानी खरबूजा, तरबूजा और ककड़ी, इनका भी सेवन आप करते रहें। स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, अपने जीवन में सेवा और सहयोग की भावना रखें और हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीना ने और प्रस्तुति थी राजेश महावर की। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार कोटा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। अब श्रोता सुनेंगे गाने सुहाने।

हाजिर हैं हम लेकर के गाने सुहाने, और ये पहला नजराना है आप सभी के लिए। फिल्म का नाम है मोहरा, आवाजें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की, गीत इंदिवर का और संगीत विजू शाह का।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस

0: बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गाने सुहाने आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर, और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है जुबैदा, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। और इससे पहले कि आप सुने अगला गाना, हम आपको देंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आज सुबह 8:15 बजे आपको सुनना है सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में विषय होगा कम उम्र में पीसीओडी की समस्या और भविष्य के प्रभाव। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित होंगी डॉक्टर निधि बर्थुनिया। विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है या आपका कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2333444 और 2941142। कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलें आज सुबह 8:15 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: गाने सुहाने आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर, और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत रचना असद भोपाली की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आपके अपने चंबल चैनल पर। और कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको एक बार फिर से देंगे श्रोताओं, सुबह 8:15 आपको सुनना है सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आज विषय होगा कम उम्र में पीसीओडी की समस्या और भविष्य में प्रभाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित होंगी डॉक्टर निधि बर्थुनिया। विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है या आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 2941142 और 2333444। कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलें सुबह 8:15 सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। और आइए फिल्म संगीत में गाने सुहाने हम आपको सुनवा रहे हैं, तो बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। फिल्म कलाकार से ये गाना हमने आपके लिए चुना है, आवाज है किशोर कुमार की, गीत इंदिवर का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फिल्म कलाकार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे गाने सुहाने। आपको बता दें, सुबह 8:15 आपको सुनना है सजी फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। विषय होगा कम उम्र में पीसीओडी की समस्या और भविष्य में प्रभाव, और हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर निधि बरथुनिया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:00 को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जाँच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित

0: सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान

0: अभियान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गयी है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमरीका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे सजी फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
5: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स, सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लैप्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चेदानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
2: सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह अलग अलग विषयों को शामिल करते हैं, तो इस बार का हमारा विषय है कम उम्र में पीसीओडी की समस्या और भविष्य में प्रभाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि बर्थुनिया। तो श्रोताओं, विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है या आपका कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2941142 और 2333444 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार।
6: नमस्कार
2: और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। जैसा कि इस कार्यक्रम में आज विषय रखा गया है कि कम उम्र में पीसीओडी की समस्या और भविष्य में प्रभाव, तो सबसे पहले तो अपनी बात को हम यहाँ से शुरू करेंगे कि किसी भी बालिका को या महिला को कब पता चलता है कि उसे पीसीओडी की समस्या है, या कहें क्या इसके लक्षण हैं?
6: पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज
2: जी,
6: इसमें सबसे प्रमुख जो लक्षण होता है वो होता है इरेगुलर पीरियड्स, अनियमितता
2: जी
6: मासिक धर्म की। इसमें लेट पीरियड्स ज्यादा पाए जाते हैं कि कोई भी बच्चे को दो दो तीन तीन महीने तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उनको एक चेकअप कराना चाहिए अपना, जो बेसिक सोनोग्राफी होती है अल्ट्रासाउंड
2: जी।
6: उसमें अगर हमको सोनोग्राफी में जो अंडाशय है उसमें बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट दिख जाते हैं
2: जी,
6: हर महीने एक अंडा अंडाशय में बड़ा होता है
2: जी,
6: अगर वो टाइम से बड़ा नहीं होता है तो उसमें फॉलिकुलर सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। और अगर हमें मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट पेरिफेरली अरेंज्ड, मतलब एक जैसे मोती की माला पहनी हुई
2: जी,
6: ऐसी हमें सोनोग्राफी में ओवरी में दिखती हैं फॉलिकुलर सिस्ट, तो उसको हम एक से ज्यादा सिस्ट है इसलिए पॉलीसिस्टिक बोलते हैं
2: जी।
6: तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोस हो जाती है उसी तरीके से। तो जब भी किसी महिला या बालिका को पीरियड्स मिस हो रहे हैं, दो दो तीन तीन महीने में आ रहे हैं और मोटापा बढ़ रहा है, तो ये दो प्रमुख लक्षण हैं कि उन्हें आके चेकअप कराना चाहिए और पीसीओडी के बारे में जानना चाहिए।
2: जी, आपने बताया कि मोटापा और इररेगुलर पीरियड्स, इसके अलावा भी और कोई ऐसा लक्षण होता है जिससे ये समझा जाए कि इन्हें पीसीओडी है?
6: हाँ, इसी के साथ में अगर आपको फेशियल हेयर ग्रोथ
2: जी,
6: जो आमतौर पर कम पाई जाती है महिलाओं में, तो उसे हम हर्सूटिज्म बोलते हैं, वो समस्या है, साथ में एक्ने या पिंपल है, मुहासों की समस्या है
2: जी,
6: या फिर मोटापा तेज गति से बढ़ रहा है, तो आपको जरूर पीसीओडी होने की संभावना है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए
2: जी। तो ये तो आपने बताया कि ये लक्षण है, इनको देखकर ये समझा जा सकता है कि पीसीओडी है, इसके कारण क्या है, किन कारणों की वजह से पीसीओडी की समस्या आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है?
6: ये बेसिकली एक जीवन शैली से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं
2: जी।
6: जो भी बच्चे या महिलाएं इनएक्टिव हैं, मतलब फिजिकली एक्टिविटी उनकी कम है और कंटिन्यूस सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे आजकल बच्चे पढ़ते रहते हैं या मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं
2: जी,
6: तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, जिससे जो हमारे फीमेल के हार्मोन्स है
2: जी,
6: ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH और FSH, जो हमारी अंडाशय से निकलते हैं
2: जी,
6: उनका इम्बैलेंस हो जाता है और ब्लड में उनके इम्बैलेंस की वजह से ही पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है
2: जी। जी, ये तो आपने बताया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जो ये कारण है, इसके अलावा कोई ऐसा जन्मजात कारण भी होता है जिसकी वजह से समस्या हो सकती है?
6: नहीं, पीसीओडी बिल्कुल भी एक जन्मजात बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और जो भी बच्चे जंक फूड का सेवन ज्यादा करते हैं
2: जी,
6: जैसे आजकल पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन ये सब खाते हैं और एक्टिविटी उनकी बिल्कुल जीरो है
2: जी,
6: उनमें ही ये ज्यादा पाया जाता है
2: जी। तो जैसा कि हमारा विषय है कि पीसीओडी की समस्या और भविष्य में प्रभाव, क्या पीसीओडी की समस्या होने पर भविष्य में इसके किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में बताइए।
6: महिलाओं में सबसे प्रमुख जो प्रभाव पड़ता है वो है इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता
2: जी,
6: क्योंकि इसमें क्या होता है कि एनोविलेटरी साइकिल्स होती हैं। जैसे आपका मासिक धर्म 28 से 30 दिन में आता है, तो महीने के 14वें और 15वें दिन जो अंडा बड़ा होकर अंडेदानी से निकलता है उसे हम ओविलेशन बोलते हैं
2: जी,
6: तो इसमें ये टाइम से बड़े नहीं होते फॉलिकल्स और ओविलेशन नहीं होता
2: जी,
6: इसलिए कंसीव करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है महिलाओं में और बांझपन देखा गया है
2: जी।
6: इसके अलावा क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है इस बीमारी में, यानी जो भी आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो आपका बर्न नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा
2: जी,
6: और वो वसा यानी फैट के रूप में कन्वर्ट होके आपका मोटापा बढ़ा रहा है, इसलिए फ्यूचर में इन पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है
2: जी।
6: और उसी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेज है
2: जी,
6: और फ्यूचर में रेयर पॉसिबिलिटी में ओबेसिटी की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है
2: जी। तो ये तो बात हुई कि भविष्य में प्रभाव की। अब आज जो हमारे कार्यक्रम का विषय है उसे हम अपने शहर से जोड़कर देखें कि हमारे शहर में बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, इसमें यंग गर्ल्स भी होती हैं और अक्सर जैसे क्या होता है बैठे बैठे उन्हें पढ़ाई करनी होती है, घंटों वो बैठते हैं और घर का खाना तो उपलब्ध होता ही नहीं है, तो उन्हें जंक फूड भी वो खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, तो क्या ऐसी समस्या आपको स्टूडेंट्स में भी देखने को मिलती है?
6: रोजाना कोटा में तो ऐसा है
2: जी,
6: कि अगर हम 10 बच्चे देख रहे हैं डेली तो उसमें से 5 को पीसीओडी हो गई
2: जी।
6: और एक चेतावनी वाली बात ये भी है कि यहाँ पे थायराइड भी बहुत कॉमन है, पीसीओडी के साथ में थायराइड यंग एज में काफी मिल रहा है, 18 साल के बच्चों में, 20 साल के बच्चों में
2: जी,
6: क्योंकि मेन जो इनका कॉज है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये लोग नियमित रूप से खाते नहीं है अपनी मील्स, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लेट उठते हैं, इनकी नींद पूरी नहीं होती, जो इनकी जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब रहती है
2: जी।
6: स्ट्रेस भी एक कॉज है क्योंकि इनको स्ट्रेस तो रहता ही है पढ़ाई का
2: जी,
6: फिर यंग एज में ये बच्चे घर से दूर भी रह रहे होते हैं तो मेंटल स्ट्रेस भी एक फैक्टर ऐड हो जाता है। इन सब चीजों की वजह से इनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से पीरियड्स तो डेफिनेटली इरेगुलर होते हैं, मोटापा बढ़ता है और इनकी जो सोचने समझने की क्षमता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है इन बच्चों का।
2: तो क्या इस सब की वजह से थायराइड भी जो है बढ़ जाता है?
6: हाँ डेफिनेटली, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल स्ट्रेस से डेफिनेटली इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं
2: जी।
6: और मेरा एक टेक होम मैसेज यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चे लेट पीरियड से ग्रसित हैं, जैसे उनको दो दो तीन तीन महीने में पीरियड नहीं आता और वो अपनी मदर से इस बात को शेयर करते हैं कि हमें प्लीज पीरियड टाइम से नहीं आ रहे हैं, आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, तो

0: वो कई बार उनको डिस्करेज कर देती हैं कि कोई
1: जी
0: बात नहीं, अभी तो इनिशियल स्टेज है, तो आप लेट लेट पीरियड भी आ रहे हैं तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, वेट करो वेट करो। और मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं बाद में जो मदर खुद लेके आती है कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, पीरियड्स
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: आए और वेट हो रहा है उन बच्चों का 80-85।
1: जी जी
0: तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय हो जाता है। फिर हमारे को पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है।
1: जी जी
0: तो अगर डायग्नोसिस जल्दी होगी तो ट्रीटमेंट भी 2-3 महीने का ही रहता है इसमें।
1: जी तो या माओं को भी जो है सतर्क रहने की जरूरत है कि यदि उन्हें लगता है उनकी बेटियों को किसी तरह का पीरियड्स में डिले हो रहा है तो वो खुद डिले ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
0: देखिए जो नॉर्मल साइकिल है आपकी 28 से 30 दिन की, अगर उसमें प्लस माइनस 7 डेज हम उसको नॉर्मल मानते हैं कि कभी कभार ठीक है 1 वीक आगे पीछे हो गया, लेकिन अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है 2-2, 3-3 महीने से पीरियड नहीं आ रहा तो डेफिनेटली उनको आके डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए।
1: बिल्कुल, यहाँ अपने श्रोताओं को मैं एक बार फिर से बता दूं कि सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य समय आप सुन रहे हैं। विषय है कम उम्र में पीसीओडी की समस्या और भविष्य में प्रभाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि बर्थुनिया। तो श्रोताओं, विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है आपका, तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर है 2941142 और 2333444। कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो अब से लेकर 9 बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो आपके सवालों का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। मदर्स का यानी कि पेरेंट्स का भी, घर वालों का अवेयर होना बहुत जरूरी है किसी भी बात के लिए। अब बात आती है, आपने कहा कि मोटापा और जो ये सब रीजन है इसको किस तरह से कम किया जाए। दवाइयां तो होती ही हैं, पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है, दवाइयां तो है ही, इसके अलावा और किस तरह से ट्रीट किया जाता है इसे?
0: इसमें हम लोग सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ही एक बहुत अच्छा सजेशन देते हैं बच्चों को।
1: जी,
0: और इसमें हम एक्सरसाइज को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं।
1: जी,
0: तो रोजाना कम से कम आधा घंटा तो उन्हें निकालना ही चाहिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी कार्डिक एक्टिविटी बढ़े, आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, तो उसको हम कार्डिक एक्सरसाइजेज या एरोबिक्स बोलते हैं। तो उसमें बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग है, रनिंग है, इवन डांस अगर कोई बच्चा एंजॉय करता है तो उससे मेंटल एज वेल एज फिजिकल उसका जो है एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये सब हम बोलते हैं कि कम से कम आप कितना ही पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली कोटा के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, तो आप अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आधा घंटा तो रोजाना निकाल ही सकते हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा डाइट को फॉलो करिए, जंक फूड तो टोटली इसमें अवॉइड करने को बोलते हैं, जिसमें मैगी आ गया, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये। और हम बच्चों को बोलते हैं आपको बीच बीच में भूख लगती है तो आप चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स ये सब खाते हैं, इसके बजाय आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, सैलड्स ले लीजिए, जो आप खा सकते हैं बीच बीच में।
1: जी,
0: और ये सारा जंक फूड अवॉइड करिए। जो भी महिलाएं इस डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो मेडिसिन के साथ में ट्रीटमेंट सिर्फ 3 महीने का ही होता है।
1: जी,
0: किसी किसी पेशेंट्स में हमको 6 महीने तक देना पड़ता है। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पीसीओडी 3 महीने में रेगुलर साइकिल्स भी हम ले आते हैं, प्लस अगर कोई निसंतानता का ट्रीटमेंट ले रहा है, इनफर्टिलिटी का, तो उसमें भी अगर वो डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करता है तो मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट बहुत जल्दी उसको रिजल्ट मिल सकता है।
1: जी, तो जो एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट के बाद जो कंसीव कर लेती हैं महिलाएं, क्या गर्भावस्था के दौरान उन्हें कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं?
0: हाँ, हमें एक्चुअली वेट पे तो एक चेक रखना ही है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको लाइफस्टाइल वही रखनी है कि उसको हाई प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट और फैट थोड़ा मीडियम लेना है, है ना। और इसके अलावा एक्सरसाइज, चाहे वॉकिंग ही करें प्रेगनेंसी में, वो बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: दूसरा हम उसका शुगर लेवल टेस्ट करते रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में हर ट्राइमेस्टर में हम उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कहीं शुगर लेवल तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
1: तो इन सब का जो है ध्यान डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। जी, एक और जो है टर्म है पीसीओएस, ये भी हमने अक्सर हमें सुनने में आती है, ये क्या है?
0: पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
1: जी,
0: पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज।
1: जी,
0: तो पीसीओडी हम तब बोलते हैं जब सिर्फ पीरियड्स लेट आ रहे हैं और हमने सोनोग्राफी करके देखा उसमें हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखी, लेकिन हम सिंड्रोम तब लेबल करते हैं जब उसमें और 4 लक्षण जुड़ जाते हैं, जैसे हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी अगर हमारे ब्लड में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो दूसरे और लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एक्ने है, पिंपल, मुहासे और फेशियल हेयर ग्रोथ या ऐसी जगह जहां पे

0: नॉर्मली फीमेल्स में हेयर नहीं मिलते हैं, तो मेल पैटर्न के जहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है उसको हम हर्सूटिज्म बोलते हैं
1: जी।
0: इसके
1: जी.
0: अलावा हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है आपको और आपके लेवल में, जैसे हम सीरम इंसुलिन कराते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो गया है। तो ये सारे जब कारण एड अप हो जाते हैं मोटापे के साथ में, लेट पीरियड्स और ये दोनों चीजें, तो हम इसको सिंड्रोम बोलते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, पीसीओएस के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, E11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC हंडर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अपना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर और इस कार्यक्रम में आज विषय है कम उम्र में पीसीओडी की समस्या और भविष्य में प्रभाव, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर निधि बर्थुनिया। श्रोताओं, कोई सवाल है आपका, कोई समस्या है आपकी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 2941142 और 2333444। कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीसीओएस के बारे में, और आपने बताया कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं एक महिला में जी, इसके बारे में और बताइए कि किस तरह के लक्षण या किस तरह की समस्याएं वो फील करती हैं। मेंटली भी क्या इस तरह का स्ट्रेस हो जाता है जब वो ये सब देखती हैं कि बाल हमें अनावश्यक बाल बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कई बच्चे पीरियड्स उनको इतने ज्यादा लेट नहीं होते, लेकिन वो इस चीज से बिल्कुल टीनेज की जो लड़कियां हैं उनमें ये चिंता हो जाती है कि हमारे फेस पे बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं और हेयर फॉल हो रहा है
1: जी।
0: उसके लिए वो कई बार स्किन स्पेशलिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं जो हार्मोनल टेस्ट कराते हैं उनका, जो फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन दोनों का टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, फिर वो हमारे पास रेफर करते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास
1: जी।
0: और हम लोग सोनोग्राफी करके और डॉक्यूमेंट कर देते हैं पीसीओडी। तो जितने भी हमारे लक्षण हैं जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी मेल हार्मोन की अधिक मात्रा की वजह से होते हैं
1: जी,
0: इन सबका ट्रीटमेंट एक ही है जो हम बोलते हैं हार्मोनल थेरेपी
1: जी।
0: अब कई बच्चे और माएं संकोच करते हैं कि आप गर्भ निरोधक दवाइयां जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अनमैरिड लड़की को क्यों दे रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये OCP सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करते, गर्भ निरोधक नहीं है, इसमें ये जो कॉम्बिनेशन होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का
1: जी,
0: वो जो आपके इम्बेलेंस हो रहा है उसको ठीक करने के लिए होता है, है ना। तो ये इसका ऐसा नहीं है कि इनको अभी दे देंगे तो फिर बाद में इनके बच्चे नहीं लगेंगे। कई गांव वाली महिलाएं हैं या कम पढ़ी लिखी माताएं वो ये सोचते हैं कि गर्भ निरोधक पिल हमारी बच्ची को दे रहे हैं 14 साल की, ये तो अभी शादी भी नहीं हुई है
1: जी,
0: तो ये सोच गलत है, यही इसका ट्रीटमेंट है।
1: अच्छा,
0: है ना। तो ये जो गर्भ निरोधक दवाइयां हैं ये सिर्फ उसके लिए यूज नहीं होती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ये हार्मोनल इम्बेलेंस ठीक करने के लिए भी होती है। और जैसे ही हम ये दवाई शुरू करते हैं तो 3 चीजों में बच्चे को आराम मिलता है, जैसे इरेगुलर पीरियड्स उसके ठीक हो जाते हैं और जो ये मुहासे हैं और फेशियल हेयर ग्रोथ ये दोनों ठीक हो जाते हैं
1: अपने आप ये चले
0: जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी। तो ये जो है पीसीओएस का ट्रीटमेंट करने पर ये इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और टर्म हमने अक्सर सुनी है पीसीओएस ड्रिलिंग, ये क्या है?
0: ये क्या होता है कि जैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं निसंतान दंपति का और उसको हमने देख लिया कि पीसीओडी हो रहा है
1: जी,
0: तो जो हम इलाज करते हैं उसमें हम एक फॉलिकुलर स्टडी करते हैं दवाई देने के बाद, जो हमारे ओवुलेशन इंडक्शन के ड्रग हैं तो उसको हम देते हैं कि अब हम अंडा बड़ा कर रहे हैं और उसको अंडेदानी से टाइमली रिलीज करने के लिए हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि नहीं कोई भी रिजल्ट मिल रहा है 3-4 महीने के इलाज में, तो हमारा एक लैप्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा हम एक जांच भी करते हैं उन दंपत्ति की, और हम देखते हैं कि अगर पीसीओएस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बल्कि ओवरीज हैं, मतलब अंडेदानी का साइज बढ़ जाता इसमें।

0: बढ़ जाता है और बहुत सारे मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम फिर उसमें पीसीओएस ड्रिलिंग करते हैं जो दूरबीन द्वारा किया जाता है
1: जी जी।
0: तो रेयर केसेस में ये करनी पड़ती है और इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं।
1: मतलब इसमें ड्रिलिंग थोड़ा सा समझाइए कि क्या, दूरबीन से उसको,
0: दूरबीन से अंडेदानी को देखते हैं और एक कॉटरी होती है
1: जी जी,
0: उसके थ्रू हम इनको पंचर करते हैं, सिस्ट को पंचर करते हैं, उससे उसकी वजह से जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है वो करेक्ट होता है,
1: जो अनावश्यक सिस्ट होती है उन्हें पंचर करके बाहर कर देते हैं।
0: नहीं, सिस्ट को पंचर करके उसका फ्लूइड निकल जाता है
1: जी जी जी। ये हुआ पीसीओएस ड्रिलिंग। अब बात करते हैं हमारे लाइफस्टाइल की, तो और जो है क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए खासतौर से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, किस तरह की लाइफस्टाइल वो लें, कैसा उनका खान पीन हो, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: एक तो स्लीप साइकिल आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, कम से कम आप 6 से 8 घंटे की नींद लें
1: जी,
0: और ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट मील है, उसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: सुबह अगर बच्चे या महिलाएं जल्दी उठ जाती हैं तो थोड़ा आप योगा, वॉकिंग, मेडिटेशन ये सब करिए।
1: हाँ हाँ।
0: और जैसे मैंने
1: एक
0: पहले
1: कॉलर जुड़ रहे हैं।
0: हाँ जी,
1: हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बात कर रही है?
2: नमस्ते मैम, मैं नेहा बोल रही हूँ बूंदी से।
1: नमस्ते जी नेहा जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैम मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे पीरियड्स काफी लंबे जाते हैं, मतलब 8-9 दिन तक जाते हैं, तो क्या ये भी पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड है?
0: देखिए, पीसीओडी में हमेशा ही पीरियड्स लेट नहीं होते हैं, इसमें इरेगुलर भी हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड भी होते हैं। और एक मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप ओवरवेट भी नहीं है तो एक लीन एंड थिन पीसीओएस भी होता है, जिसमें महिला या बच्चे का वेट बढ़ता नहीं है लेकिन पीरियड इरेगुलर है, तो इसमें हम पीसीओएस या पीसीओडी तभी लेबल कर सकते हैं जब आपकी सोनोग्राफी हो गई हो। अगर सोनोग्राफी में पीसीओडी आ रहा है और लंबे पीरियड चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
1: धन्यवाद नेहा जी, आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि स्लीप साइकिल उनकी डिस्टर्ब होती है।
0: हाँ, तो स्लीप साइकिल हमेशा सही रखनी चाहिए, तो 6 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे दिन के लिए, एनर्जी लेवल ठीक करने के लिए वो जरूर लीजिए। बस हमें क्या करना है कि भूखा कभी नहीं रहना है। अब क्या होता है कि मोटापा, हम हमेशा जब भी पेशेंट आते हैं तो हम बोलते हैं वेट कम करिए, तो बच्चे महिलाएं वो चाहती हैं कि हम क्रैश डाइटिंग करके कैसे भी हम वेट कम करें, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए, मतलब दिन में 4-5 बार डिवाइड करके आप खाना खाइए
1: जी।
0: और उसमें आपको चॉइस करनी है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमें जंक फूड अवॉइड करना है, हमें लो कैलोरी डाइट खानी है, लो फैट वाली और हाई प्रोटीन
1: जी।
0: तो उसमें हमें जैसे ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हो, दलिया ले सकते हैं, आप स्टीम्ड पोहा ले सकते हैं जो भाप पे बनाओ, और उपमा है, इडली सांभर है, ये सब आप लो कैलोरी डाइट आती है तो ये ले लीजिए। अगर आप दूध लेते हैं तो हम प्रेफर करिए कि गाय का दूध लीजिए जो लो फैट कंटेंट हो, बिना मलाई का, विदाउट शुगर
1: जी,
0: ये ले लीजिए। फ्रूट्स जो हैं उसमें भी कुछ शुगरी फ्रूट्स होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए, जिसमें है आम हो गया, संतरा हो गया, चीकू हो गया और अंगूर
1: जी,
0: इनका सेवन ना करें। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं वो आप ले लीजिए, और साथ में आप छाछ ले सकते हैं, ये सब तो आपका स्प्राउट्स ले सकते हैं जो अंकुरित मूंग वगैरह है, वो हाई प्रोटीन के सोर्सेज हैं
1: जी।
0: तो ये सब आप लीजिए। दोपहर में सलाद जरूरी है आपकी, उसमें दाल जरूरी है
1: जी,
0: और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल और चपाती, और इसके अलावा शाम को फिर आप फ्रूट्स लीजिए
1: जी,
0: क्योंकि आप देखते हैं कि चाय के साथ में कुछ भी स्नैक्स, पकौड़े या ये चिप्स वगैरह खा लेते हैं, वो नहीं खाने चाहिए
1: जी।
0: और रात में भी लाइट जो ब्रेकफास्ट वाले मील है वो रात में आप लीजिए, जैसे दलिया है, उपमा है, ये सब लीजिए। रात में रोटी का सेवन ना करें
1: जी, और उसे जल्दी लें। आजकल इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि रात का खाना
0: जल्दी लीजिए, टाइम से लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा टहलिए भी सही, ताकि वो पच जाए। और बच्चों को मैं कहती हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ के, तो वो कंटिन्यूस ना बैठ के पढ़े, जैसे अगर आपका एक चैप्टर खत्म हो गया एक दो घंटे में, आप तो फिर आप 10 मिनट्स की वॉक करिए
1: जी जी,
0: ताकि आपका मेटाबॉलिक रेट, अब जैसे आप के हॉस्टल में सीढ़ियाँ हैं तो
1: कॉलर है।
0: हाँ जी,
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ महावीर
1: जी। नमस्कार महावीर जी।
3: हाँ,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: मैं कनवास से बात कर रहा हूँ
1: जी।
3: मैम जैसे मैं डॉक्टर साहब ने बताया कि

0: पीसीओडी में जो है हार्मोनल हम ट्रीटमेंट देते हैं इम्बेलेंस को बैलेंस करने के लिए
1: जी।
0: तो ये क्या जैसे कितने समय तक देते हैं और फिर क्या वो बैलेंस हो पाता है?
2: हाँ बिल्कुल, इसमें कम से कम 3 महीने का तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है एक साथ, फिर उसके बाद हम दोबारा टेस्ट करके देखते हैं तो हार्मोनल लेवल्स ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गए हैं तो हम ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। वेट इस दौरान आपको कम करना होता है और लाइफस्टाइल ठीक करनी होती है जो
0: जैसे
2: हाँ जी
0: जैसे जैसे 3 महीने के बाद भी जैसे कई पीसीओडीज में जो है रेगुलर नहीं होता है पीरियड वापस।
2: हाँ तो हम 3 महीने और उसको एक्सटेंड करके 6 महीने तक भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट, पर इसमें हम मेन जो स्ट्रेस करते हैं कि ये हम 6 महीने आपको रेगुलर पीरियड्स लाने के लिए हार्मोनल दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन मेन जो इसमें हमने बताया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जीवन शैली आपको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो आपको जीवन भर भी दवाई लेनी पड़ सकती है। जो लोग ये समझ जाते हैं बात कि हमें डाइट और एक्सरसाइज या व्यायाम करना ही है और अपना वजन कम करना है, एक्टिव रहना है, उनको डेफिनेटली दवाई से निजात पा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़े। तो 6 महीने का मैक्सिमम ट्रीटमेंट देते हैं इसमें।
0: मैडम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो लेवल इम्बेलेंस होता है तो उससे भी तो वेट बढ़ता है,
2: उससे वेट पड़ता है तो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे थोड़ा वेट कम होता है, लेकिन वेट इतना ओवरवेट आते हैं लोग ये 80-85 किलो के, तो जो ऑलरेडी आपके डिपॉजिट हो गया है फैट उसको बर्न करने के लिए तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे आपको थोड़ा पसीना आए, हार्ट रेट बढ़े और ये फैट डिसॉल्व हो।
0: एक मैम एक
1: जी महावीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
0: मैं शुगर वाली भी कोई टेबलेट देते हैं क्या आप?
2: हाँ देते हैं, अगर उसमें सीरम इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है उसका और वेट बहुत ज्यादा है तो मेटफॉर्मिन।
0: शुगर लेवल नॉर्मल
1: है तो क्या दवाई देते हैं शुगर की?
2: नहीं, शुगर की अगर पेशेंट के वेट और बीएमआई पे डिपेंड करता है, एक बेसल ये बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं, वो अगर उसका ज्यादा है और हमें कम करना है वेट और वो तो हम ऐड करते हैं डेफिनेटली शुगर की दवाई भी, उसको मेटफॉर्मिन बोलते हैं, तो उसको लो डोज में हम ऐड करते हैं 2-3 महीने के लिए।
1: जी महावीर जी और कोई सवाल आपका? जी धन्यवाद आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि
2: हम तो जीवन शैली के बारे में
1: जीवन शैली के बारे में हम बात कर रहे थे।
2: इसमें एक्टिविटी हम देखिए छोटे छोटे अगर हम चेंजेस करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में तो वो बहुत एड ऑन होते हैं, जैसे हम लिफ्ट ना यूज करके सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएं, कुछ भी सामान हमें मतलब घर के बहुत पास की दुकान से लाना है तो पैदल जाएं
1: जी,
2: है ना। तो ये महिलाओं के लिए है कि वो घर का भी काम खुद करें और बच्चे जो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं वो भी पैदल चलें, मतलब कोचिंग तक पैदल जाएं, थोड़ा सामान लेने भी जा रहे हैं तो पैदल जाएं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें क्योंकि सारे हॉस्टल्स में आजकल लिफ्ट है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि कॉरिडोर में ही चलें आप 10 मिनट।
1: हाँ हाँ,
2: ऐसे दिन में 4 बार चलेंगे तो 40 मिनट की वॉक ही हो जाएगी आपकी। तो ये मैं उनको कहती हूँ, और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें क्योंकि पढ़ाई भी करनी है तो भूखा तो रह ही नहीं सकते
1: जी जी,
2: है ना। तो फ्रूट्स और दूध वगैरह तो डेफिनेटली लें।
1: हाँ अभी बीएमआई के बारे में जिक्र हुआ, बीएमआई के बारे में बताइए कि बीएमआई इंडेक्स कितना रहना चाहिए और ये जो खासतौर से युवतियों का, जिससे उन्हें समझ सके कि मोटापा उनका बढ़ रहा है।
2: अगर 30 से ज्यादा है बीएमआई तो डेफिनेटली मोटापा है उनको, तो हमें उसको कम करना पड़ता है
1: जी,
2: 30 से नीचे। बाकी हाइट के अकॉर्डिंगली वेट हम डिसाइड करते हैं, जैसे आपकी 5'3" है हाइट तो आपका 53 वेट होना चाहिए, अगर हम ग्रॉसली ऐसे ही रफली कैलकुलेट करें तो ऐसे।
1: और यदि जैसे महिलाएं हैं, जैसे बच्चे होने के बाद कुछ महिलाओं का अक्सर वजन बढ़ ही जाता है, उस समय क्या पैमाना तो यही रहेगा?
2: हाँ बिल्कुल यही रहता है। वो तो कोई प्रेग्नेंट हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए एक ही पैमाना रहता है
1: जी, लेकिन वजन बाद में थोड़ा बढ़ ही जाता है महिलाओं का।
2: बढ़ ही जाता है, लेकिन हम अब जैसे डिलीवरी के बाद बढ़ा है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर जो स्तनपान कराते हैं 6 महीने तक उनका बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, प्लस आपको चाहे किसी भी एज ग्रुप की महिलाओं चाहे प्रेग्नेंट हो या नहीं, उसको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए
1: जी।
2: और फीमेल ये जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं बहुत कम है, तो उसमें आपको दाल तो डेफिनेटली नियमित रूप से, स्प्राउट्स हैं, पनीर है, ये सब लेना चाहिए।
1: एक कॉलर है।
2: हाँ जी
1: हेलो
3: हेलो
1: कौन बात कर रही है?
3: नमस्कार मैम, मैं कांता शर्मा बोल रही हूँ।

0: कोटा नयापुरा से।
1: जी नमस्कार कांता जी, सवाल पूछिए अपना।
0: डॉक्टर साहब नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: मेरा ये है सवाल कि मैं 47 ईयर की हूँ, है ना, तो मैंने क्या वो मैं ब्लीडिंग ज्यादा होती पीरियड के टाइम।
2: हाँ जी।
0: तो फिर मैंने ये सोनोग्राफी करवाई तो उसमें क्या यूट्रस में 4 सेंटीमीटर की वो गांठ बताई है।
2: हाँ जी।
0: तो क्या उससे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या उसको गांठ को निकलवाना जरूरी है, कोई खतरा थोड़ी होगा उसे नहीं निकलवाए।
2: आप तो फाइब्रॉइड के बारे में जानना चाहते हैं जो बच्चेदानी में आपकी गांठ हो गई है।
0: हाँ,
2: तो
0: हाँ,
2: इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट अगर आपको हैवी पीरियड आ रहा है तो वैसे तो हम 10 सेंटीमीटर से छोटी गांठ का मेडिकली ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका जो लोकेशन है सोनोग्राफी में आया है उस पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। अगर वो बच्चेदानी की लाइनिंग के बिल्कुल पास में है गांठ तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर हम हिस्ट्रोस्कोपिकली दूरबीन द्वारा उसको निकलवा सकते हैं।
0: नहीं तो ऐसे बोला था डॉक्टर ने भैया आपके क्या अभी मेनोपॉज की आने वाली है तो
2: हाँ, तो फिर आप मेडिकल उस पे जाएं तो ज्यादा सही रहेगा। आप तो दवाइयों के द्वारा ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
0: ठीक है
1: जी कांता जी, धन्यवाद आपने कॉल किया। यहाँ पर एक ब्रेक की बारी है और फिर अपनी बातचीत को जारी रखेंगे।
3: विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर M.L. अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर M.L. अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे चीरे द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
5: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र TPA उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
4: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
5: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
4: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। और इस कार्यक्रम में आज विषय है कम उम्र में PCOD की समस्या और भविष्य में प्रभाव, और हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर निधि बर्थुनिया। तो श्रोताओं अब भी 15 मिनट हमारे कार्यक्रम में है, आप कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं 2941142 यानी 2941142, और एक और नंबर है 2333444 यानी 2333444। तो डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले ढेर सारी जानकारियां हमने ली, आपने बताया PCOD और PCOS के बारे में बताया, लाइफस्टाइल कैसी हो ये भी आपने बताया, किस तरह का खान पान हो ये भी आपने बताया, और एक्सरसाइज डांसिंग वॉकिंग या जो भी कार्डिक एक्सरसाइज हो ये जरूर करनी चाहिए आपने बताया। शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि जो भविष्य में इसका प्रभाव होता है वो कैंसर का खतरा भी होता है, ये आपने जिक्र किया था। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैंसर का खतरा किस तरह से हो सकता है।
2: किसी भी कैंसर में हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है मोटापा, चाहे वो स्तन कैंसर हो चाहे सर्वाइकल कैंसर हो। तो मोटापे की वजह से और हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से अगर ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है तो आगे जाके एंडोमेट्रियल कैंसर जो बच्चेदानी का कैंसर है वो होने की संभावना है। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि एक HPV का टीका आया है आजकल।
1: जी जी, ये हम अक्सर सुन रहे हैं कॉमन।
2: हाँ हाँ, तो ये सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को के बचाव के लिए लगाया जाता है, और आजकल हम ये बहुत यंग एज से लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे 9 वर्ष की आयु से 26 साल तक के दोनों लड़के लड़कियों को लगाते हैं, क्योंकि HPV एक यौन संक्रमण द्वारा फैलने वाला बीमारी है, वायरस है, तो हमारी टारगेट ये है कि शादी होने से पहले ही लड़कियों को और लड़कों को दोनों को लगा दिया जाए।
1: जी जी।
2: और हमारे पास जैसे पूरी दुनिया में ही नंबर वन पे और इंडिया में भी स्तन कैंसर है जिसके लिए कोई टीका नहीं है। सेकेंड हमारा सर्वाइकल कैंसर है।
1: जी, जी।
2: और 1 लाख

0: महिलाओं का डेथ हो जाती है हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से।
1: तो ये आपने कहा लड़कों को भी लगाया जाता है, उन्हें किस तरह का खतरा है इससे?
0: नहीं, उनमें दूसरे पेनिस का कैंसर है, लंग कैंसर है, मुंह का कैंसर है, इन सबसे बचाव होता है। और अगर लड़के प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनको HPV का संक्रमण नहीं होगा, तो वो लड़कियों को ये संक्रमण नहीं पहुंचा पाएंगे।
1: जी, और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से इससे बचाव होता है, क्या अन्य कैंसर से भी बचाव होता है इस टीका लगवाने पर?
0: हाँ बिल्कुल, मैंने बताया जैसे लंग कैंसर है, मुंह का कैंसर है, और वल्वल वजाइनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सबसे बचाव होता है।
1: ब्रेस्ट कैंसर में?
0: ब्रेस्ट कैंसर में इसका कोई रोल नहीं,
1: कोई रोल नहीं है। जी, तो ये 14 वर्ष की उम्र से सरकारी जो है अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जा रहा है।
0: बिल्कुल
1: जी, तो लगवाना चाहिए जिनकी बच्चियां और बच्चे 14 वर्ष के हैं या इससे बड़े हैं, उन्हें लगवाना चाहिए।
0: इसका बस अभी तक हम ज्यादा महिलाओं में नहीं लगवा पाए क्योंकि कॉस्ट की वजह से। अगर हम सरकार
1: एक कॉलर है।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं विद्यानगर फैमिली सेवा किरण नेवा बोल रही।
1: जी, सवाल पूछिए अपना।
2: मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ।
1: जी,
2: तो क्या है कि बहुत सी महिलाएं लड़कियां आती हैं तो बोलते हैं वही चेहरे के लिए डार्क सर्कल होते हैं ज्यादा, तो वो ठीक नहीं होते, कुछ नहीं करते। हाँ, जैसे अपन मसाज करते हैं।
1: अच्छा, तो आप इसका समाधान डॉक्टर साहब से जानना चाह रही हैं?
2: जी
1: डॉक्टर साहब, इनका कहना है डार्क सर्कल जो होते हैं वो भी कैसे रिलेटेड है?
0: डार्क सर्कल्स के 2-3 कारण हैं, या फेस पे जैसे चेहरे पे झाइयां आ गई हैं, या तो इसमें एक तो नींद प्रॉपर ना होना और बहुत देर तक मोबाइल देखने की वजह से आंखें थक जाती, उसकी वजह से है। बाकी अधिकतर महिला एनीमिक होती है, जिनके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो उनके भी चेहरे पे ऐसे काली आंखें, डार्क सर्कल्स या झाइयां आ जाती हैं, तो उन्हें अपना ब्लड टेस्ट दिखाना कराना चाहिए। और इसमें जो PCOD के पेशेंट है उसमें हमें देखा एक होता है टर्म एकेंथोसिस नाइग्रेंस, मतलब उनके गर्दन में और बगल पे काले मतलब डार्कनेस आ जाती है, तो ये भी एक प्रेडिक्टर है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो ये PCOD में जो मोटी महिलाएं हैं उनके गर्दन में काला काला हो रहा है, तो वो जब तक ट्रीटमेंट नहीं लेंगी वो ठीक नहीं होगा।
1: जी
2: अच्छा,
1: और कोई सवाल आपका?
2: और जैसे ये गर्दन में जैसे हमारी गुड़िया है तो अभी 17 साल की है, तो वो लिखाई करते करते जो झुक जाती है, तो जो उठा उठा सा रहता है गर्दन के।
0: हाँ हाँ, ये तो झुकने से हो जाता है, पोस्चर ठीक रखना चाहिए।
1: हाँ, बैठने का तरीका उन्हें सुधार लेना चाहिए अपना।
2: हाँ
1: चलिए।
2: और जो
1: जी
2: जैसे कि महिलाएं जैसे 42-45 साल की हुई तो एम्सिट से टूट जाती है।
0: हाँ जी।
2: हाँ, तो उसमें वो कमजोरी कमजोरी सी लगती है बहुत।
0: हाँ, वो तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने की लगती है, और कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं उनको, तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: जी धन्यवाद, आपने कॉल किया।
2: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते। जी, तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे जो ये HPV का टीका जो लग रहा है, पहले नहीं लगवा पा रहे थे क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा थी।
0: हाँ जी, तो सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है जिसमें वो फ्री में लगा रहे हैं, पर बहुत कम लोग आ रहे हैं इसको लगवाने के लिए
1: क्योंकि शायद जागरूकता की कमी
0: है, प्लस फेक जो सोशल मीडिया पे इसके बारे में बार बार बोल रहे हैं कि इसको लगाने से बांझपन हो जाएगा, वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं है, हमने खुद लगा रखा है, हमारे पूरे स्टाफ को लगा रखा है, मेरी 2 बेटियां उनको भी लगा रखा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप तथ्य समझिए जाके डॉक्टर के पास, और ये मिथ्स जो है मिथ्या चीजों पे ध्यान ना दीजिए, और ये टीका जरूर लगवाइए क्योंकि हमारे पास ये एक बचाव का बहुत अच्छी चीज मिल गई है। तो 9 से 14 वर्ष की आयु में तो वैसे 2 ही खुराक लगती हैं, और 15 से लेके 25 साल की उम्र के बीच में 3 खुराक लगती हैं इसकी।
1: जी जी।
0: और सरकार एक फ्री में लगा रही है 14 से 15 साल के बच्चों को, तो वो प्लीज आप जाके लगवाइए।
1: इसके बीच में क्या गैप रखा जाता है जो 3 डोज होती है इसके बीच?
0: हाँ, जैसे एक अभी लगाया, फिर 2 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, तो 6 महीने में 3 डोज लगती है।
1: तो क्या आपने कहा पहली डोज सरकार फ्री लगा रही है, तो क्या बाकी 2 डोज के लिए पे करना होता है?
0: सरकार एक्चुअली यूनिसेफ जो WHO के डेटा पे आधारित लगा रही है सिंगल डोज की, चलो एक नहीं एक तो लगाई दें।
1: जी जी।
0: इसलिए तो ये इन 14 साल की लड़कियों को दूसरी खुराक 6 महीने बाद लगवानी चाहिए।
1: जी जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी HPV टीके के बारे में, जो बालिकाओं को और बालकों को दोनों को लगाना चाहिए, उससे बहुत उनका जो है बचाव हो सकता है कैंसर से। इसके अलावा भी और

0: कोई ऐसी जानकारी जो हमारी बातचीत में छूट गई हो और हमारे श्रोताओं के लिए लाभकारी हो, ऐसा कुछ हो तो प्लीज बताइए।
1: हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि सारी महिलाओं को, स्पेशली बालिकाओं को, अपने ये एक चार्टिंग करनी चाहिए पीरियड्स की। कि कई बार हम पूछते हैं, बेटा अभी इस महीने इस डेट पे आया, तो पिछले महीने कब आया था, या 6 महीने पहले कौन सी डेट को आया था, तो इनको कुछ पता ही नहीं रहता
0: जी
1: कि हम तो भूल गए डेट। तो ऐसा नहीं है, आजकल तो बहुत सारे मोबाइल पे एप्स भी आ गए हैं जो आपको पीरियड रेगुलेटर की तरीके से

0: पता ही नहीं रहता
1: जी
0: कि हम तो भूल गए डेट, तो ऐसा नहीं
1: हाँ
0: है। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल पे एप्स भी आ गए हैं जो
1: जी
0: आपको पीरियड रेगुलेटर की तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो
1: हम्म।
0: आप अपनी मेंस्ट्रुअल चार्टिंग करिए कि पीरियड्स नियमित हैं कि नहीं। अगर 10-15 दिन से ज्यादा लेट हो रहे हैं तो पीसीओडी हो सकता है, आप आके डॉक्टर से मिलिए। अपने वेट पे भी वॉच रखिए, मैंने जैसे ही बताया कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है, बीएमआई कितना है, ये डॉक्टर से आप हर 6 महीने में एटलीस्ट जाके चेकअप करा सकते हैं अपना वजन और हाइट,
1: जी
0: है ना।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल आ रहा है कि जैसे अभी हमारी बातचीत हुई थी कि पीसीओडी का जब प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है तो महिलाएं कंसीव कर लेती हैं और उन्हें आराम से अपनी डॉक्टर की निगरानी में उनकी डिलीवरी होती है। यदि वो सेकेंड बच्चे के बारे में सोचें या प्लानिंग करें तो क्या पीसीओडी की समस्या एक बार फिर से हो जाती है कुछ समय के बाद?
0: हाँ, बहुत अधिक मात्रा में ये पेशेंट्स देखे जाते हैं, खुद ही आके वो हिस्ट्री देते हैं
1: जी।
0: कि हमें पहले बच्चा इलाज से लगा, हमें पीसीओडी था,
1: हाँ हाँ
0: और अब हम 4 साल से 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, दोबारा नहीं लग रहा है। तो फिर हम सोनोग्राफी करके देखते हैं तो फिर से वही समस्या पाई जाती है जो पीसीओडी की और अंडे बड़े ना होने की समस्या है। तो उसका दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है
1: और उसके बाद क्या वो फिर कंसीव कर लेते हैं?
0: हाँ बिल्कुल कर लेते हैं।
1: तो इसकी वजह यह मान सकते हैं कि जो पहला बेबी होने के बाद वापस अपनी लाइफस्टाइल में उन्होंने जो है
0: हाँ, वो सुधार नहीं किया नहीं और किया। वो ही पुरानी लाइफस्टाइल अपना ली, वजन बढ़ा लिया वापस से। और बहुतों को पता रहता है कि हमें पीसीओडी, पर वो एक डिलीवरी होने के बाद थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं,
1: हाँ हाँ।
0: फिर वो शेड्यूल अपना फिर खराब कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, खान पान का ध्यान नहीं रखते
1: और पीरियड्स इरेगुलर है तो भी ध्यान नहीं देते,
0: तो भी ध्यान नहीं देते,
1: बहुत बड़ी समस्या है। और आफ्टर मैरिज तो ये चिंता का विषय भी हो जाता है कि एकदम पीरियड्स हाँ। नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं जी। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट ऐसा जो छूट गया है हम अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे?
0: मैं यही यहाँ से बोलना चाहूंगी कि ये जीवन शैली की बीमारी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बहुत बार हम नहीं चाहते कि हम आपको हार्मोनल पिल्स दें या दवाई दें, अगर मार्जिनली आपके 10-15 दिन पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो हम यही बोलते हैं बच्चों को कि आप 1-2 महीने डाइट और एक्सरसाइज करके देखिए, है ना। अगर उससे ही आपके रेगुलर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा
1: जी। इसके अलावा हमेशा अपना रेगुलर एक्सरसाइज, खान पान, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें और जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर की निगरानी में है, तो बराबर जो है दवाइयां लें, अपने टेस्ट समय पर करवाएं और जो भी डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं उसको फॉलो करें। एक अंतराल की यहाँ पर बारी है डॉक्टर साहब और उसके बाद अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
3: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
2: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
3: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
2: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य आप सुन रहे हैं और बहुत कम समय हमारे कार्यक्रम में बचा है तो ब्रीफ में हमारे श्रोताओं को आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहब?
0: मैं यही कहूंगी कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है
1: जी।
0: इसमें आप बस जागरूकता की वजह से ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अधिकतर महिलाओं को, बालिकाओं को इसके बारे में पता ही नहीं है और वो बहुत देर से हमारे पास आती हैं
1: जी।
0: तो अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं, ज्यादा आ रहे हैं, लंबे टाइम तक चल रहे हैं, लेट आ रहे हैं, कोई भी आपकी अनियमितता है
1: या बार बार आ रहे हैं,
0: हाँ बार बार आ रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं
1: जी,
0: क्योंकि जरूरी नहीं कि हर मरीज एक ही तरीके का प्रेजेंटेशन आए
1: जी।
0: मतलब 80% महिलाओं में लेट पीरियड आते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें जल्दी आ जाते हैं या लंबे चलते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे भी पेशेंट देखे गए कि और उसमें जिसमें वजन ज्यादा नहीं होता, अगर वो अंडर वेट है, 40 किलो की है, 45 किलो की है, अंडर नरिश्ड है, तो भी पीसीओडी पाया जाता है जिसको हम लीन एंड थिन पीसीओडी के पेशेंट्स मानते हैं
1: जी जी।
0: तो आप कोई भी अगर इरेगुलरिटी है पीरियड्स में तो उसको निग्लेक्ट नहीं करें, डॉक्टर के पास आइए। अगर आप अनमैरिड हैं, आने में झिझक रहे हैं अकेले, तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए और उनके साथ में आप आइए, परामर्श लीजिए और अपनी जांचें करा के उसका समाधान हमसे पाइए।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर निधि बर्थुनिया, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी, हमारे श्रोता भी लाभान्वित हुए होंगे और जो बहुत सी महिलाएं अब झिझक झिझक रही हैं या संकोच कर रही हैं, निश्चित रूप से वो अपनी बच्चियों को उनको संभाल कर ऐसी

0: समस्या है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आई, श्रोताओं को आपने जानकारी दी। अपने श्रोताओं को बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया हिमांशु नामा का और कंट्रोल रूम से हमें सहयोग मिला संजीव सोलंकी का। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि संघर्ष की इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार 80 परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को इस महीने जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कल गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने उद्यमशीलता की बदौलत देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थान के विकास में

0: उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने वाले राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की याचिका में दायर दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। चार शहरों में दिन का पारा 45, वहीं चार शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
1: जिले में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। पंखे और कूलर भी असर साबित हो रही हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और ताप घात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राजधानी जयपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं और दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन हीट वेव और गर्म रातें दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। कल हनुमानगढ़ में हल्की बरसात हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कल रात कोटा पहुंची। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके रोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि शुरूआती जांच में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जयपुर से आई 5 विशेषज्ञों की टीम मामले की गहन जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
2: देखिए, अभी तो केवल अंदर जो आईसीयू की जो स्थिति है उसको देखा है। जो पेशेंट्स 4 एडमिटेड हैं, उसमें से एक तो काफी ठीक है, 3 अभी भी थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनको अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर जैसे टेक्निकली डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे पूरे टाइम, और जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होपफुली बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे।
0: डीग जिले के परमधरा गांव में कल 3 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने 33,72,00,000 रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 21 गांवों की कृषि भूमि को सीधा फायदा मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस साल की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये सेवा और संवेदना का पर्याय है। इनकी सेवा भाव से असंख्य लोगों के जीवन में आशा का संचार होता है। नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कोटपुतली बहरोड के शाहजहांपुर में नर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश में चल रहे ग्राम रथ अभियान के तहत जिला प्रभारी मंत्री रात्रि चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कल कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर पहुंचे। उन्होंने रामपुरा खुर्द में रात्रि चौपाल में भाग लिया। उधर उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने जैसलमेर जिले में 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा

0: की है। शेख हेवसर ने कल जिले की गोमट ग्राम पंचायत में जन सुनवाई के दौरान ये ऐलान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान, पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत, और ये है पहला नजराना आप सभी के लिए। फिल्म का नाम है हंगामा, आवाज है बाबुल सुप्रियो की, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आपके अपने चंबल चैनल पर। और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीत रचना प्रवीण भारद्वाज की और संगीत अनु मलिक का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है इश्क। आवाजें हैं उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। राहत इंदौरी का गीत है और अनु मलिक का संगीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन।

0: बेणियो, आज अपना घर आंगन कार्यक्रम में एक बहुत ही जरूरी विषय ले रहे थे जो अपना समाज, परिवार और हर माता पिता व युवाओं का भविष्य से जुड़े हुए थे। वो विषय छे बेणियो, बच्चा की सही उम्र में शादी। बेणियो, अपना गाँव में, समाज में शादी ब्याह एक रस्मी कोई न बल्कि यह घनी बड़ी जिम्मेदारी हो छे। आपन सब छामा छा का अपना बच्चा की शादी टेम से हो जावे, अच्छो घर परिवार मिल जावे और वहाँ को जीवन खुशहाल रेवे। समय पर शादी को मतलब यही छे बेणियों का अपना बच्चा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से तैयार हो जावे, जिम्मेदारी निभावा लायक बन जावे, तब लियो गयो फैसलो ही जीवन ही खुशहाल बना सके छे। आज का टाइम में पढ़ाई लिखाई, आत्मनिर्भरता, अच्छा संस्कार ये सब उतना ही जरूरी छे जितनो समय पर ब्याह। इके लेखा जरूरी छे का ब्याह न तो छोटी उम्र में होवा और न ही बहुत देर सु। बेणियों, कई बार माता पिता छोका सु छोका देखबा का चक्कर में अपना बच्चा की उम्र बढ़ा देवे छे। पढ़ाई, करियर, आपसी समझ सब जरूरी छे, पर बेणियों ब्याह ही अतनो भी मत टालो का उम्र ही खड़ जावे। अपना बड़ा बुजुर्ग खेवा भी छे का जीवन का हर काम को एक ही सही समय होवे छे, समय पर शादी और परिवार की सही योजना जीवन ही संतुलित व खुशहाल बनावा में मदद करे छे। खबा को मतलब यही छे कि समझदारी, तैयारी और सही समय खुशहाल परिवार की मजबूत नींव मानी जाओ छे। तो आज अपन यहाँ महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा करेंगा। तो ई विषय पर ही बातचीत करवा के लेकर आज अपन एक बहन जी के पास आया था और यहाँ से अपन ई विषय पर बातचीत करेंगा। तो बहन जी, राम राम।
1: राम राम साहब।
0: तो बहन जी, पहले तो मैं आपको परिचय जानना चाहूंगी।
1: हाँ, मारो नाम कैलाश शर्मा जी।
0: हाँ हाँ।
1: और मैं एक अध्यापिका जी
0: हूँ,
1: राजकीय बालिका माध्यम विद्यालय दिगोद में।
0: अच्छा।
1: कार्यरत छू। तो फरमाओ, आपको का ये प्रश्न छे, का ये विषय छे?
0: हाँ, बिल्कुल बहन जी, आज माँ को देखो जो बातचीत को विषय छे वो यो छे का बच्चा की सही उम्र में शादी। तो सही उम्र में शादी को काई महत्व छे?

0: देखो साहब अच्छा जे अगर सही उम्र में शादी हो जाओ तो वो तो बहुत महत्व भी चे फायदा भी बहुत है। अगर सही उम्र में बच्चा की शादी हो जाओ चे तो उस हिसाब से वहाँ कताए जीवन का सेठ ओबामा भी सही रह जाए, दोनों बच्चा कताए आपस में समझदारी में भी सही रहो जाए। फिर दूसरी बात घर गृहस्थी में भी को बच्चा को अच्छे तरह से मन पड़ जाओ जे और जल्दी फिर बच्चा भी हो जाओ जे तो आगे भी जब वो बड़ा हो तो वहाँ का बच्चा भी वहाँ की सही उम्र में बड़ा हो जाओ जे तो उसे भी वहाँ का ताई अच्छी हेल्प मिल जाओ जे और माता पिता भी पूरा सपोर्ट करे जे। तो इस हिसाब से बच्चा की शादी हमारा हिसाब से सही उम्र में कर देनी चाहिए, ज्यादा बड़ी उम्र न करनी चाहो।
1: बहुत बढ़िया। पण बहन जी आजकल का जो अपना बालक छे ना ये पढ़ाई और करियर बनाबा का चक्कर में शादी घना मोड़ा करे छे, घना लेट हो जावे छे, तो इको आप मा यू बताओ कि इसे काई फायदा होवे छे और काई नुकसान होवे छे।
0: हाँ यह बात तो बिल्कुल आपने सही की छे कि आज का जमाना में बच्चा पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दे छे। देखो आजकल लड़कियां भी बहुत पढ़ रही छे, लड़का भी बहुत पढ़ रहे छे, दोनों बच्चा ही सोचे छे कि मां एक पढ़ाई कर अपना पेरा पखड़ा होकर एक अच्छी आय को वो साधन रहे, वो नौकरी करा या कोई भी बिजनेस करा धंधो पानी करा तो वो सही सेट हो जाओ को बाद में शादी करा। क्योंकि आज का बच्चा समझ में आ गया, देखो कि आज का समय में जब शादी कर लगा वहाँ बच्चा बच्ची होगा तो वहाँ का खर्चा भी होगा तो वो खर्चा बहन भी करना, तो यह अच्छी बात है। खैर बच्चा समझदार हो गया और बड़ा होया के बाद अपना करियर का बारे में सोचे है ना, तो इससे फायदा तो यही है कि भाई अगर वो करियर बनाकर शादी करे जे तो बाकत है किसी प्रकार की कोई आर्थिक जो जे वह कमी न होगा जीवन में,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वो आर्थिक का रूप में दोनों जना ही कमाओ जे और वो हिसाब से आपने गृहस्थी ने चला पाता हिसाब से होगा बच्चा का दाय भी कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आजकल आप जानो जो बड़ा बालिक बागा स्कूल का यहाँ घना खर्चा है बच्चा का, तो इस हिसाब से फायदा तो बहुत है। पर यह चे के साथ साथ फायदा के साथ साथ देखो नुकसान भी है। नुकसान ये कि अगर ज्यादा लेट में जैसे आप मानो कि 35 साल की उम्र में शादी करी या 40 सही में शादी करी घनी बार तो क्योंकि मेल मिलाप भी न बैठे, देखो बहुत बार संबंध आन में शाह सही संबंध न मिल पाओ और एक उम्र निकलवा का बाद में बच्चों न मिले कभी बच्ची न मिले है ना, तो ऐसा करता करता बड़ी मुश्किल से जब वहाँ का संबंध बैठा जाए तो उम्र वाकई उम्र थोड़ी सी उम्र निकल जाओ जे, देर हो जाओ जे, उनका बाद में वहाँ का बच्चा बच्ची में परेशानी आओ जाए है ना। मान लो लड़की जो तो आजकल का जमाना में आप जानो जो खान पान भी बहुत बिगड़ रहे, खान पान भी सही कोई ना, तो उस हिसाब से बड़ी उम्र में लड़कियां का बड़ी दिक्कत आओ जे कि बच्चा बच्ची में कुछ इलाज कराने पड़े जे। बहुत बार आप जानो आजकल तो IVF बहुत चालू है तो फिर बहुत बार मन IVF को भी लेनी पड़े, तो इस तरह से नुकसान ही हो जाए। और दूसरी बात लेट शादी करे जे तो बच्चा भी देखो वहाँ का छोटा ही रहेगा, अब जैसा वहाँ की तो उम्र बढ़ जाओगी माता पिता की तो और बच्चा वहाँ का छोटा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सही बात कर, माँ बाप तो बूढ़ा हो जाएगा,
0: बूढ़ा और बच्चा की जिम्मेदारियां तक निभाता तो माँ बाप बूढ़ा हो जाओगा, वो वहाँ की शादी करवा में मतलब सक्षम न रहेगा, रिटायर्ड हो जाओगा या फिर धंधे पड़े में करेगा, तो देखो बुढ़ापा तो आया था कही चाहिए इंसान तो शरीर से स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी हानि तो यही है बाद में थोड़ी दिक्कत आ जी। जैसे उम्र में तो सही उम्र में शादी हो जानी चाहो बच्चा की तो ज्यादा बढ़िया, तो यही
1: बहुत बढ़िया। अब बहन जी आप माँ यह बताओ कि जो माँ बाप अपना बच्चा को ब्याह तय करे छे तो वहीं की बात को ध्यान रखनी चाहो।
0: हाँ देखो साहब ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछो छे कि माता पिता ने कहता है बच्चा की शादी करते समय यो ध्यान रखा नहीं चाहो कि एक तो बच्चा में समझदारी होगा, थोड़ी कच्ची उम्र में शादी ना करो, जैसे 15-16 साल तक की एक टीनेज की जो उम्र हो जो बच्चा की थोड़ी नादानी की उम्र रह जाए समझ ना रहा भाई, तो कम से कम जो हमारी माँ की जो उम्र बच्चा की जो डिसाइड चे सरकार की तरफ से तो कम से कम 18 साल की लड़की 21 साल को लड़को
1: बिल्कुल
0: ना उनका बाद में ही शादी ब्याह का बारा में सोचे तय करा, उनका साथ साथ बच्चा की राय भी ली जाओ, ये ना अपन जबरदस्ती बच्चा ना कोई कभी साथ में बांधा तो बच्चा की राय ले वो बहुत जरूरी है। अगर लड़की भी हाँ करे लड़को भी हाँ करे दोनों में आपस में समझ होगा और राजी होगा तभी करो। दूसरी बात देखो ये में सबसे बड़ी बात यह है कि शादी ब्याह का मामला देखो ऐसा है कि परिवार भी देख कर शादी करनी चाहिए, जैसे आप लोग परिवार फैमिली का बारा में आप देखो अच्छो परिवार होगा है ना, और अच्छो आप बहुत बार आप सुनी होगी आप लोग आने का शादियान में घना लोभी लोग मिल जाओ जे और वहाँ के साथ में उलट जावा जा तो वो रिश्ता भी गाई जाए पूरा सक्सेस न हो सफल न हो, तो माता पिता ने यह भी ध्यान रखा नहीं चाहो शादी ब्याह की बात में बच्चा की माँ का एक परिवार भी अच्छी तरह से देख रहा हुआ है ना, और बच्चा का दाई भी पूरी तरह से समझदार हो जाओ, जितना बच्चा भी पढ़ जाओ लिख जाओ थोड़ी सही उम्र में आ जाओ तो है ना वो भी वहाँ का भविष्य का बारे में सोच बार लग जाओ और दोनों बच्चा ही समझदार हो जाओ।

0: एज माँ का माता पिता देते हैं शादी करवन करनी चाहिए।
1: अब बहन जी आप माँ की जो ग्रामीण बहन है वहाँ से काय खेपो चाहोगा?
0: वो आपने ग्रामीण बहन से यही खेपो चाहूंगी कि भाई आप आपका बच्चा बचाना देखो, पहले तो पढ़ाओ लिखाओ, माँ का तय सही दिशा दो, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर दो, और उसके बाद में बच्चाना समझाओ भी सही, माँ का तय कि भाई आप शादी का हिसाब से भी मांगते हैं तैयार करो, और जब तक बच्चा राजी न हो तब तक आप लोग बच्चा की शादी मत करो, क्योंकि देखो अब ये समय आज को जो है ना बच्चा की समझदारी को समझे, आपस में बच्चा एक दूसरा न समझे, जब भी मांगते हैं जीवन का बंधन में बांधनी छाव, और सबसे पहले तो देखो पढ़ाई लिखाई और पेरा पकड़ो बहुत जरूरी है। तो आप सभी बेड़ान से हमारा अनुरोध है कि बच्चा बच्चा न पढ़ाओ, वही अपना पेरा पकड़ा करो, समझदार बनाओ, और उसके बाद में वहाँ का शादी ब्याह के बारे में सोचो जी भाई।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
1: और यहाँ पर अपना एक युवा बेटी भी बैठी छे, तो बेटा काय नाम छे आपको?
2: मेरा नाम निहल तिवारी है।
1: अच्छा, तो बेटा आज माँ की बातचीत को विषय छे कि बच्चा की सही उम्र में शादी, तो इपा आप काय खेबो चाहोगा, काय विचार छे आपका?
2: मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के हिसाब से एक चीज बना रखी है कि एज जो होती है शादी की वो 20-25 बीच में हो जानी चाहिए, पर उससे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि और भी बहुत बातें होती है, जैसे हमें लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के वे में सोचना चाहिए कि आप जिससे भी आप शादी करना चाह रहे हैं सबसे पहले तो आपको अपने आप में तैयार होना पड़ेगा कि क्या आप उतने मैच्योर है, क्या आप उतने आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है कि आप चीजों को समझ पाए, जब भी आप किसी को अपने लाइफ में वो जगह देंगे तो आपको वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी, और आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट और रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे करने पड़ेंगे। पहले के जमाने में और आज के जमाने में काफी फर्क आ चुका है। जैसे पहले के जमाने में लोग बहुत एडजस्टमेंट्स कर लेते थे, लड़का और लड़की दोनों ही कर लेते थे, लेकिन आज के जमाने में नहीं करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें भी चेंज हुई है, सब कुछ इवॉल्व हो गया है। तो शादी की एज डिसाइड नहीं करना चाहिए हमें कि इस एज में कर ले, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सही पार्टनर हमें चूज करना चाहिए, हमें अपने आप में भी रेडी रहना चाहिए, उसके अलावा हमें कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए। आप एक महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने में किसी को नहीं जान सकते हैं, कुछ तजुर्बे आपको लेने पड़ेंगे उस व्यक्ति को समझने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ बातों से नहीं समझ सकते हैं, आप बातों के अलावा उनके एक्शंस भी आपको देखने पड़ेंगे, आपको उनका घर बार, उनकी बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, वो अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि फिर वो आपके पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद। तो और उसके अलावा आज के जमाने में हर कोई अपने करियर पे बहुत फोकस करता है, चाहे लड़की हो या लड़का, तो करियर रिलेटेड भी अगर आपको वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपका जो भी मन है करने का, या उनका भी जो करियर है उसमें आप उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, दोनों ही बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लेट शादी प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता है कि सही इंसान से शादी, सब कुछ चीजें देख करके शादी करना जरूरी है। और मेरा ये भी मानना नहीं है कि आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, इम्परफेक्टनेस में ही परफेक्टनेस मिलती है, और वो परफेक्टनेस हमें खुद से बनानी पड़ती है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उनके सोच विचार कहीं पे मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बहुत सी सारी जगह नहीं मिले, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हम काम करें एक दूसरे के विचारों को समझने में, उनका भी ओपिनियन समझने की कोशिश करें और अपना भी ओपिनियन उन्हें समझाने की पूरी तरह से कोशिश करें। जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाती है आपकी किसी के साथ में और इतने आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको शादी जैसा स्टेप लेना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगे आपसे बातचीत कर, और राम राम बेटा।
2: नमस्ते।
1: तो बेणियों की परिस्थिति से आपने घनी सारी बेणियां गुजर भी होगी, जाकर ब्याह लायक बच्चा बच्ची होगा, पर बेणियों ज्यादा जल्दबाजी भी ठीक कोई ना, और ज्यादा देरी भी कई बार चिंता को कारण बन जाओ छे। माता पिता अपना बच्चा की पढ़ाई, समझदारी और वहाँ की इच्छा को ध्यान में रखता हुआ ही सही समय पर विवाह को निर्णय लेवा, और अपना बच्चा का भविष्य ही खुशहाल बनावा। बेणियों अब आपन स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम सुनियो, विषय छो आपना बच्चा की सही उम्र में शादी। एक मासूम और एक युवा बेटी सु आपन वहाँ का विचार जानिया, दोनों का विचार बेणियों अपनी अपनी जगह सही था।

बहनों, आज बात करेंगा अपने एक ऐसी योजना की जिन्हें अपनी गरीब परिवार की महिलाओं धुआं से बचाए छे। वाचा बहनों, उज्ज्वला योजना। बहनों, यह योजना प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 में शुरू की थी और इमा बीपीएल महिलाओं के ताई मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाओ छे। इमा गैस चूल्हा के साथ पहलो भरे हुए सिलेंडर मल्लचे और बाद में सरकार द्वारा प्रत्येक सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी भी सीधी बैंक खाता में आ जाओ छे। ई योजना को लाभ उठाबा के लेखे आवेदक की उम्र यानी कि महिला की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए जो बीपीएल परिवार से हो, जिसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की डायरी और मोबाइल नंबर भी होगा, वह महिला ई योजना को फायदो उठा सके छे और मुफ्त गैस कनेक्शन प्राप्त कर सके छे। तो बेनियाओं, जो भी महिला ई पात्रता के अंतर्गत आवे छे ई योजना को फायदो उठा सके छे और आधिकारिक PMUY वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सके छे। ई योजना का उद्देश्य यही छे बेनियाओं, के स्वस्थ रसोई और स्वस्थ परिवार।

चुड़गला काग मोरड़ा यहाँ पे डांप रहता, चढ़ी चुड़गला काग मोरड़ा यहाँ पे डांप रहता, हरा रोकड़ा हरा नीमड़ा ताने छाया देता, हरा रोकड़ा हरा नीमड़ा ताने छाया देता, तपती धूपा जाती रूपा ने भी सांस दिलावे, तपती धूपा जाती रूपा ने भी सांस दिलावे, सर्दी गर्मी भर जाता मैं सबकी जान बचावे, सर्दी गर्मी भर जाता मैं सब

धरती को संघार पेड़ जे जीवन को आधार, धरती को संघार पेड़ जे जीवन को आधार, मरुदरा ने छाया देव अपना पंख पसार, मरुदरा ने छाया देव अपना

जदना होता पेंड रूकड़ा मनक गणा दुख पाता, जदना होता पेंड रूकड़ा मनक गणा दुख पाता। हरी भरी धरती को रूप आख्या देख न पाता, हरी भरी धरती को रूप आख्या देख न पाता।

हे धरती माई ज्वार बाजरा खेता में मंडरा गया, धरती माई ज्वार बाजरा खेता में मंडरा गया। चढ़ी चुड़गला सूरज डलता या पेड़ा पे आ गया, रे चढ़ी चुड़गला सूरज डलता या पेड़ा पे आ गया। दुख सुख की ये बाता करता ठंडी सांसा लेता, दुख सुख की ये बाता करता ठंडी छाया लेता। सूरज उगता ही ये देखो बागा में उड़ जाता सम।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 10 बजने को हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं, तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज्यादा जरूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू
0: जी।
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई, लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहाँ की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है नॉर्थ रीजन में। गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
0: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
1: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं है उससे निगड़ित होती है, तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहाँ पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
0: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
1: देखिए पूरी दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं, लेकिन

0: लोग जो कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन हो रहा है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के. क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है, जैसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं, इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा.
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है. अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार न होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में.
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने. हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे. यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए, हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूँगा.

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या है?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है, या आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना, या हल्की सी कमजोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है

0: है, इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है, जिससे इनका जो शरीर में अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
1: जो मेजर होता है,
0: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं। माए देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
0: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
1: बीटा,
0: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहे की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जब हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने की वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में थका हुआ सा दिखता है बच्चा?
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चे में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है, और कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया, तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्त संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण, या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से, इसका रीजन जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी, तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपने कहा हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है?
0: इसमें अब भी देखिए जरूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को कैसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक

0: ग्रह है तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक आध केस ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया, और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है जिसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफी ज्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज की तकलीफ होती हो या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूं तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा, भाई देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या है?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है। रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ, ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज में, पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
0: आपने बताया कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना जरूरी होता है?
1: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन के स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाने कितना जरूरी होता है, तो शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकार मान भी बड़ा होता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
0: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
1: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोह की मात्रा ज़्यादा नहीं रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रहती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पे कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और अगर 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पे करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
0: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या

0: परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है।
1: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है, थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है और काफी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना जरूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है।
0: ये तो बहुत उम्दा बात है आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा।
1: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जिसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी। पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली एक कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते रहने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, कि उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाजी रही है।
0: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
1: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीजें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नजर में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है।

0: है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहां से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जैसे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं ए बी, ए बी या ओ, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या एचएलए कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, और इसमें जान का खतरा 5-10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक आध ही होता है, 1 लाख में, तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है। और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15-20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10-20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35-50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20-30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो, तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
0: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
1: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
0: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है जिसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाला है उसे भी अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया किस्सा। जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शन का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है, ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट से काफी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में, और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी एनजीओ से, किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए, एक जानना जरूरी है कि ये जो एनजीओज है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है, और इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है, अगेंस्ट थैलेसीमिया करके एक है, एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बंबई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह

0: जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
0: जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम है जो हम लोग बना रहे हैं, जो मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकेंड टायर सिटीज में ही सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोहा कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहां तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है जेनेरिक दवाइयां, जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध है?
0: दुर्दैव की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयां चल रही है इसमें ज्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से होता है, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना जेनेरिक्स बनाते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियां है इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप दिखा जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा।
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: ये वे तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हरेक की लड़ाई है, हरेक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चालोरेकर की अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से मैं सुनना चाहूंगा।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम।
1: देखिए कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है
0: जी।
1: मेन ये चीज सीखना जरूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रेटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है
0: जी जी।
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारी लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
0: जी।
1: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
1: देखिए कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज की तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेडक्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपलसरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी कही गई, तो उसके वजह से उन्होंने

0: इसमें मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया गया है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं, तो
1: इंडिविजुअलिटी
0: जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर। वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाया जा रहा था। एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोक पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहां का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग

0: कहते हैं जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है, और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
1: वो
0: जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। यह हमें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस से होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात यहां पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है, और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

0: की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने में थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वैसली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा,

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंग तरंग
1: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरि ओम शरण की गाई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में, धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कि

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं। कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जा भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

बजवा दो कन्या आरे कपड़ा के सब।

FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरण

0: किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी,
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी।
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओं, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आओ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे हैं।

0: और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
1: कोशिश करता हूँ।
0: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
0: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: विद्या विद्या,
0: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
0: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दू। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी जा।
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
0: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
0: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है।

0: जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, तीन गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
4: ठंडक में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
7: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
8: इन्हें हमारा सलाम।
7: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
9: नमस्कार
7: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
9: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
7: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
9: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
7: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
9: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
7: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
9: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
7: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
9: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के

0: जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से

0: अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा
1: सलाम।
2: परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। दोपहर के 12:30 बजने को हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थी। और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर,
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

ಮಾಡಿ.

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो धुनी चार।

तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर यह निर्णय किया। 3 मई को हुई इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक की आशंका है। एनटीए की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर यह साफ हो गया है कि इस परीक्षा प्रक्रिया को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। एनटीए जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी नीट परीक्षा से जुड़े कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर अभ्यर्थियों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। एनटीए की ओर से जल्दी ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करती है और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करती है। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सेवाभावी नर्सिंग कर्मियों का सम्मान समारोह रखा गया है। भाजपा नेता हेमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, बाद में स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 14 मई को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। वे पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रातानाड़ा सर्कल पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री का इससे पहले मेड़ता के संस्थापक राव दूदा राठौड़ की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत कल कोटा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। सियाम सभागार में हुई इस कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं, कुओं, बावड़ियों और पानी के स्रोतों को बचाना होगा। इस मौके पर उन्होंने जल ग्रहण विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी खनन में लगे 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 42 वाहन भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में मौसम के कल 2 अलग-अलग रूप देखने को मिले। एक ओर पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर चला।

0: बाड़मेर में दिन का पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके साथ ही बाड़मेर लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना रहा। जोधपुर, बीकानेर और फलौदी में भी झुलसाने वाली गर्मी रही। उधर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों में आंधी और गरज के साथ बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए, और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाजों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं है, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है, जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है। वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई, जब मोहब्बत, सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता, तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं। हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं ये। सच में हमें मोहब्बत है इनसे। अगर ये न होते तो ये जहाँ ही न होता। चलिए, अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है, रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं, सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है, सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूं मैं, और शाम ये दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और जमाना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत।

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

0: प्यार है तुमसे,
1: हाँ हाँ है,
0: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ।
2: मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस ज़िंदगी में, तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजय सा लगता है, लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इसी को बचाकर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं, चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है, और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुँच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है, और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से

रोमांटिक माना जाता है जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है क्योंकि ये मानवीय भावनाओं विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचें, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पैगाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम, उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सबने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो वही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं।

एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96-96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फेहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

विनोद कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है। ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है। ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है। ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है, बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो आसमान नहीं मिलता, अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई 2016 की है। 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है। संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी। मैंने ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, अब समाप्ति की ओर। क्या समाप्त हो ही गया, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल, आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक खास स्थान दिलाता है।

नर्स का कार्य केवल दवाइयां देना या मरीजों की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती हैं। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती हैं परिचारिकाएं। आज के दिन हम नर्सेस को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है।

0: तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने

0: की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूं फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: आशिकन।
1: मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है। इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का नमस्कार
0: और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है, है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर क्योंकि एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, हाँ। कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें हाँ। ये सब चीजें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें
1: है।
0: हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता दस दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
1: हाँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलते हैं, और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं,
0: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
0: जी
1: हैं।
0: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
1: जी,
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में
1: जी।
0: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
1: और
0: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना

0: आ रही है. तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे. और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं. आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
1: जी,
0: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे. लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
1: जी
0: है.
1: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी.
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है. इनकी बात भी होगी. और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है. तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें.
1: चलो चलते हैं.

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य

0: दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
0: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है
1: जी।
0: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
1: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हो, या आपके बागीचे में लगे हो, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
0: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती, तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
1: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है।
0: हाँ।
1: भाई तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
0: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती है।
1: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही के बाहर
0: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बार भी और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है। इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है।

0: होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियां लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि ये नर्स चिकित्सा संबंधी विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौज से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको

0: घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि
2: बिल्कुल और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है, वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल।
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह, और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक के संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया,
2: क्या बात है?
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
2: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है, अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
2: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
2: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
2: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं, और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही।
2: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई और

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता। एक और संदेश है, 100 सुनार की 1 लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी।

0: और सौ सोनार की एक लोहार की, ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
1: क्या बात है, इसी तरह से

0: करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
1: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
0: तो गीत सुने अबे
1: जी।

0: बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में है, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े तेड़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
0: और
1: बड़ा
0: इसी
1: हो रहा है।
0: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे, जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए।

0: शिल्पा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददीहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी मेरे सामने।

0: सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान है और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलिया खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
0: जी।
1: और क्रिएटिव है
0: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
0: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
1: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो

0: हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसकी वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूं तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए,

0: और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है।
0: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर।
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था, साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे।
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत, वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी जी जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह, हाँ।
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए
0: जी।
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
0: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी
0: जी।
1: और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमराप्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने मुझे याद आया सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के जो औरंगाबाद से वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ

0: तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे। बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरी जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था। और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया, जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंडसअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है, और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्ध सत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया, क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डाले। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं, और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन

0: जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि

0: उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ।
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का युनक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी युनक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे, तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है, कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे, और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: प्रोत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं, और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है, वो यादगारें हमें काम आती है
0: जी,
1: वो बहुत बढ़िया होती है
0: जी।
1: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
0: जी।
1: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें, और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
0: जी।
1: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत, देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
0: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
1: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो

0: मंदिर देखना चाहता हूं और उसी लिए मंदिर जाता हूं। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूं, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूं। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूं। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने
2: जी।
1: आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो, दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की माया ही हो गई जैसे
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

0: आप विवेक भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमलापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

अभी आप विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। सायंकाल के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पहले की गर्मी की छुट्टियां कैसी होती थी, जब ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया और ना ही कोई रील्स का चक्कर।
1: और दोस्तों, आज की छुट्टियां कैसी है, जहां सुबह आंख खुलते ही हाथ खुद ब खुद

0: मोबाइल ढूंढने लग जाता है।
1: नमस्कार दोस्तों, पुरानी यादों और आज की नई दुनिया की मजेदार तुलना के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
0: और मैं मनीषा,
1: और हम दोनों की तरफ से आप सभी को
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले की छुट्टियां वर्सेस आज की छुट्टियां, और यकीन मानिए दोस्तों, फर्क काफी मजेदार है। दोस्तों, पहले की गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पूरा दिन बाहर खेलते थे, कंचे, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, और शाम तक घर वापस आ जाते थे।
0: और राहुल, आज बच्चे कहते हैं मम्मी बाहर गर्मी है, और पूरा दिन ऐसे और मोबाइल के साथ अंदर की मस्ती।
1: वैसे गर्मी बहुत है, मतलब पहले की तुलना में जब हमारी देखा जाता था तो गर्मी कितनी कम हुआ करती थी, लेकिन आज टेम्परेचर कितना हाई पहुंच चुका है। दोस्तों, पहले दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, पर आज बस ऑनलाइन लिखकर ही सब मिल जाते हैं।
0: और पहले कहानी दादी नानी सुनाती थी, आज यूट्यूब पर स्टोरी टाइम हमारा चल रहा होता है ना।
1: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों एक बात सच है, पहले की छुट्टियों में जो सादगी हुआ करती थी वही असली मस्ती थी, वो दिल के बहुत ही करीब थी।
0: ये तो तुमने बढ़िया कहा, अच्छी बात कही, और वाकई में सच भी यही है। और देखा जाए ना तो आज की छुट्टियों में सुविधा है, कनेक्शन है, दुनिया की जानकारी है, लेकिन कभी कभी खुलकर जीने का समय थोड़ा कम हो जाता है ना।
1: बिल्कुल, और पहले लोग जो है ना पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते थे, और आज लोग स्क्रीन की रोशनी में अकेले बैठे हुआ करते हैं।
0: तो सवाल ये नहीं है कि पहले बेहतर था या आज बेहतर है, सवाल ये है कि हम दोनों का सही संतुलन कैसे बनाएं।
1: थोड़ा मोबाइल भी चलाएं दोस्तों, क्योंकि वो भी जरूरी है, थोड़ा बाहर भी खेलें, थोड़ा ऑनलाइन दुनिया भी हो और थोड़ी सी लेकिन असल दुनिया भी हो,
0: क्योंकि असली छुट्टियां वही हैं जहां यादें बने, मुस्कान हो और दिल खुश रहे।
1: और इसी पुरानी यादों और नई दुनिया के बीच की मजेदार बातों के साथ शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, क्योंकि यहाँ पर बात होगी कल की भी और आज की भी। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले मनीषा, ले चलते हैं हमारे दोस्तों को
0: ये संगीत की ओर।
1: बिल्कुल, और सुनाते हैं आज की शाम का ये पहला गाना।

0: ओटीटी और प्रसार भारती के नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वेव्स की।
1: राहुल, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले दोस्तों को बताते हैं कि आखिर ओटीटी होता क्या है।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों आपको बता दें कि ओटीटी का पूरा नाम ओवर द टॉप है, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेट के माध्यम से सीधे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर वीडियो और ऑडियो सामग्री देखना या सुनना।
0: दोस्तों पहले हमें फिल्में, धारावाहिक या कार्यक्रम देखने के लिए केवल टीवी चैनलों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आप इंटरनेट के जरिए अपनी पसंद का कंटेंट कभी भी और कहीं भी ढूंढ सकते हैं और उसे देख सकते हैं।
1: ये तो तुमने ठीक कहा कि पहले तो हमें कुछ भी देखना होता था तो बस टीवी के आगे
0: टाइम
1: कि इस टाइम पे ये आएगा तो हम देखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब तो इंटरनेट के जरिए तो हम कुछ भी कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आज के समय में कई लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मौजूद है गुना राहुल। इन प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, खेल समाचार और शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध रहते हैं।
0: और दोस्तों अब बात करते हैं भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स की। जी हाँ दोस्तों, प्रसार भारती जो कि दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण करता है और संचालन करता है, दोस्तों इसने डिजिटल युग में कदम बढ़ाते हुए वेव्स नामक ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
1: और दोस्तों आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन और क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों को देश दुनिया तक पहुंचाना है।
0: दोस्तों वेव्स पर दर्शक दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम, समाचार, रेडियो सामग्री, लाइव टीवी चैनल्स और विशेष डिजिटल कंटेंट भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी एक और खास बात यह है ना कि इसमें भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है।
1: और दोस्तों युवा वर्ग के लिए भी इसमें ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
0: बिल्कुल मनीषा, जिससे बहुत कुछ हमारे युवाओं को सीखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ना हर युवा को ये देखना ही चाहिए और सुनना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों आज डिजिटल मीडिया का दौर है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जानकारी का भी माध्यम अब बन चुके हैं। दोस्तों प्रसार भारती का वेव्स इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भारतीय दर्शकों को विश्व स्तरीय डिजिटल अनुभव देने का प्रयास कर रहा है।
1: तो दोस्तों ये तो हमने बात की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वेव्स के बारे में। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब फिलहाल से
0: बिल्कुल ले चलें गीत संगीत की दुनिया में। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आज की शाम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आपके रेडियो दोस्त मनीषा और
1: राहुल के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय की, जिसने दोस्तों मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे

0: Honorable Miss?
1: Miss Seema?
0: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए वरना घर आ जाएंगे.
0: क्यों लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे.
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए. अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा.
0: जेल तो तुम जाओगे. तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है. डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता. ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें. पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें.
2: हेलो मम्मा.
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युवाणी, जहां आज आपके साथ आपके दो रेडियो दोस्त हैं, मैं राहुल
1: और मैं मनीषा।
0: तो दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। मनीषा, क्या तुम जानती हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी?
1: जानती हूँ और तुम्हें भी बताती हूँ और हमारे दोस्तों को भी बताते हैं इनके बारे में।
0: तो फिर बताओ।
1: हाँ राहुल, जैसे कि तुमने इनके बारे में पूछा तो हम बता देते हैं कि इन्हें जो है ना आधुनिक नर्सिंग की जननी माना जाता है।
0: अच्छा।
1: फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है ना आधुनिक नर्सिंग की जननी माना जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, इसलिए उनका नाम फ्लोरेंस रखा गया।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, आपको बता दें, उस समय समाज में लड़कियों का नर्स बनना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन फ्लोरेंस ने लोगों की सोच की परवाह नहीं की और बीमार लोगों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। वैसे मनीषा, ये आज भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि आज भी लड़कियों को जो ये नर्सिंग लाइन है उसको बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए सही नहीं है। तो मतलब उस समय से ही ये परंपरा चली आ रही है।
1: लेकिन अब देखा जाए तो अब तो लड़कियां जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।

0: बढ़ रही है।
1: कोई सा भी क्षेत्र लड़कियों से जो है अछूता नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो हम बता दें दोस्तों को कि उन्होंने नर्सिंग की विशेष शिक्षा प्राप्त की और बाद में अस्पतालों में काम करना शुरू किया। वे बहुत दयालु और अनुशासित थी, मरीजों की देखभाल करना उन्हें सबसे अच्छा काम लगता था।
0: और मनीषा, मैंने सुना था ना कि उन्होंने युद्ध के समय भी घायल सैनिकों की बहुत ज्यादा सेवा की थी।
1: सुना तो सही था तुमने, वाकई में की थी उन्होंने। तो मैं बता दूं कि 1854 में क्रीमियन युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने साथ कई नर्सों को लेकर सैनिकों की सेवा करने के लिए पहुंच गई थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय अस्पतालों की हालत बहुत खराब थी, गंदगी, बीमारी और दवाइयों की भी कमी थी।
0: पर उस समय उन्होंने क्या किया है, इस विषय में उन्होंने क्या ही किया होगा?
1: वो भी हम बता देते हैं आपको। उन्होंने अस्पतालों की साफ सफाई करवाई, मरीजों को अच्छा भोजन करवाया, दवाइयाँ दिलवाई। उनकी मेहनत से सैनिकों की जो मृत्यु दर थी वो बहुत कम हो गई। वो रात में हाथ में लालटेन लेकर मरीजों को देखने जाती थी, इसीलिए लोग जो है ना उन्हें द लेडी विद द लैंप भी कहते थे।
0: क्या बात है, बहुत ही मतलब सराहनीय काम इन्होंने किए हैं। और इसलिए दोस्तों आज भी दुनिया भर में नर्सों को बहुत सम्मान दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। उनकी याद में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है।
1: फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमें सिखाती है कि दया, सेवा, मेहनत समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है।
0: और दोस्तों हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: दोस्तों कहते हैं कि किसी भी अस्पताल की असली ताकत वहां काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों की मेहनत होती है। लेकिन अगर बात सेवा, धैर्य और अपनेपन की हो तो नर्सिंग का स्थान बेहद खास हो जाता है। और दोस्तों इसीलिए तो कहा जाता है कि सेवा का दूसरा नाम ही नर्सिंग है। तो चलिए इसी विषय पर आपको सुनवाते हैं पुष्पेंद्र शर्मा की ये भेंट वार्ता।
2: आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्सिंग जो कैरियर है, नर्सिंग का जो एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें सेवा ही सब कुछ होता है, संपूर्ण भाव सेवा का भाव होता है। और आज जो दिवस मना रहे हैं, इस दिवस का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग कर्मी कार्य कर रहे हैं उनको हम, उनकी हम भावनाओं को समझे, उनके हम कार्य को समझे और उन्हें हम सम्मान दें। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी कोटा के स्टूडियो में श्री पुष्पेंद्र शर्मा जी। पुष्पेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी में।
3: धन्यवाद।
2: पुष्पेंद्र जी, अपना एक परिचय हमारे श्रोताओं को।
3: मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है और मैं नर्सिंग में 15 से 20 साल से इसमें काम कर रहा हूँ और नर्सिंग के कार्य में मुझे काफी लंबा समय हो गया है काम करते हुए
2: जी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस यानी नर्सों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इस विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं पुष्पेंद्र जी कि ये अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है और कब इसकी शुरुआत?
3: अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाने के पीछे जो कारण है, हर साल 12 मई को मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे ये कारण है कि जो नर्सिंग के कार्य को जिसने उत्पत्ति की और जिन्होंने मतलब उन्नत नर्सिंग को आगे बढ़ाया है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था और इस जन्म दिन के ही उपलक्ष्य में इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है।
2: आज हम ये दिवस मना रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम बहुत प्रसिद्ध है और नर्सिंग के क्षेत्र में उन एक आदर्श के रूप में उन्होंने कार्य किया और सभी जो नर्सेज हैं, हमारे नर्सिंग कर्मी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में वो हैं। तो अगर हम बात करें कि नर्सिंग जो क्षेत्र है
3: जी,
2: ये सेवा का एक रूप किस तरह से है, क्या मानते हैं आप?
3: सर, नर्सेज का जो है, नर्सेज का कार्य जो है वो एक सेवा भाव से ही पूरा सम्मिलित है, क्योंकि नर्सेज जो है वो अनुशासन के साथ, समर्पण और सेवा भाव के साथ मरीज के साथ जो कार्य करते हैं उस कार्य से ही मरीज की जो स्वास्थ्य लाभ है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और उन्होंने जो मतलब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उन्होंने इस कार्य को करने के लिए उन्होंने मरीज की सेवा, अनुशासन और समर्पण का ऐसा उदाहरण दिया जो आज पूरी दुनिया में प्रेरणा का। नर्सिंग केवल नौकरी नहीं है, बल्कि सेवा, दया, मानवता का सबसे बड़ा माध्यम है। एक नर्स मरीज की देखभाल ही नहीं करती बल्कि उसके मान आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है।
2: ये आपने बताया कि भाई नर्सिंग जो क्षेत्र है ये सेवा का ही एक रूप है और किस तरह से नर्सेज जो कार्य करते हैं, अगर हम बात करें तो क्या दायित्व होता है नर्सिंग कर्मी?
3: नर्सिंग कर्मी का दायित्व मरीज की देखभाल से लेकर खान पान, उसकी मेडिसिन, उसकी ड्रेसअप, रख रखाव, सब चीजों का मतलब वो ध्यान नर्सिंग का ही मेन रोल रहता है।
2: अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में क्या चुनौतियां होती है नर्सिंग कर्मियों के सामने, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: इस क्षेत्र में चुनौतियां मेन तो कई सारी रहती है और नर्सेज इनसे फाइट करते हुए, इन चीजों को करते हुए अपना 100%

0: रोल देने की कोशिश करता है। मरीज के साथ नाइट ड्यूटीज में 12-12 घंटे का कई बार जगना होता है। कई मरीज इस तरह होते हैं कि वो अपना आपा खो देते हैं। अटेंडर्स हैं जो कई बार अग्रेशन में आ जाते हैं, तो उनको समझाना, उनको हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उनको समझाना, उनको थोड़ा करना, क्योंकि आजकल देखने को आता है कि मतलब अटेंडेंट जो है कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, किसी बात को नहीं समझते। नर्सिंग के लिए चुनौती भरा ही कार्य रहता है।
1: देखा जाए तो जो डॉक्टर्स का कार्य होता है वो होता है मरीज का इलाज करना
0: जी,
1: और इलाज के बाद जब मरीज की देखरेख की बात आती है, पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होती है वो पूरा दायित्व होता है नर्सिंग कर्मियों के ऊपर। तो किस तरीके से नर्सिंग कर्मी इस दायित्व को निभाते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से वो मरीजों को हैंडल करते हैं, किस तरह से वो अपना कार्य करते हैं?
0: मरीज के जब ऑपरेशन होके जब मरीज नर्सिंग स्टाफ के पास आ जाता है, वार्ड में आ जाता है, तो मरीज को लेके ओटी से होने के बाद में उसके यूरिन आउटपुट से लेके उसके बेड को लेके उसके जो फीडिंग है, आईवी फ्लूड है, एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिन्स हैं, सारों का कार्य नर्सिंग स्टाफ का होता है। वो किस तरह से देना है, आईवी फ्लूड किस कितने फ्लो में देना है, किस रेट से देना है, मेडिसिन को कौन से वे में देना है, आईवी देना है, आईएम देना है, तो वो पेशेंट की ऑल ओवर कंप्लेंट्स, वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट को पेन है, पेशेंट को कोई दिक्कत है, तो वो सब चीजों के लिए नर्सिंग का ही मेन रोल रहता है। नर्सिंग स्टाफ ही अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से बात कर और उनसे जो भी मेडिसिन के लिए डिस्कस, मरीज की स्थिति के बारे में पूरा अवगत कराकर मरीज के उपचार में बहुत बड़ी रोल भूमिका अदा करता है।
1: जो पेशेंट होते हैं वो काफी दुखी होते हैं क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति कई बार ठीक नहीं हो, तो स्वाभाविक है कि एक निराशा, परेशानी और दुख उनके अंदर हो। उसको नर्सिंग कर्मी इन उस पेशेंट को, उस मरीज को जो पीड़ा में है, उसे नर्सिंग कर्मी किस तरह से समझाए, किस तरह से उससे हैंडल करे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी बहुत बढ़िया सर, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि नर्सिंग स्टाफ का जो मेन रोल है वो मेडिसिन इनके साथ साथ एक मोरल सपोर्ट देना भी बहुत बड़ा रोल बनता है कि अटेंडेंट को मरीज की स्थिति के बारे में अवगत करा कर रखें, मरीज को भी एजुकेटेड रखें कि आपका इस तरह का इलाज चल रहा है और आपको इस तरह से आपको हम आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। जब उसको इस चीज के बारे में प्रोसेस का पता होगा तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहेगा तो उसको जानकारी रहेगी, तो उसके साथ साथ वो उससे एंजाइटी फील नहीं करेगा, मतलब उसको कंफर्टेबल रहेगा, वो नॉलेजेबल रहेगा। तो और एजुकेटेड करने से क्या है, मरीज के साथ में जो परिजन है, अटेंडेंट है, वो जब एजुकेटेड रहेंगे तो मरीज की जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज हो रहा है, उसमें उनको नॉलेज रहेगी तो वो भी सपोर्ट करेंगे। कोई मेडिसिन का टाइम है या शुगर का टाइम है, कोई सर्जरी के बाद में ड्रेसिंग का पार्ट है, कोई मेडिसिन का टाइम है, तो वो भी इन चीजों के लिए अवेयर रहते हैं, तो वो मतलब उसको समझा कर अपन इस चीज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
1: अगर हम युवाओं के लिए बात करें तो नर्सिंग क्षेत्र में किस तरह से युवा प्रवेश करें, किस तरह से अपना करियर,
0: अगर नर्सिंग करियर की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है। आज भारत में ही नहीं, भारत के इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की बहुत रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। लोग ट्रेंड स्टाफ को यहाँ से मतलब इंडिया से कई लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। भारत में भी बहुत स्कोप है, कोई भी आदमी नर्सिंग का ट्रेंड हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद GNM, BSc, ANM इस तरह से इसमें कोर्सेज होते हैं, तो इनको करके आदमी सेवा भाव में जुड़ सकता है।
1: तो क्या कोर्सेज आपने बताया, जो भी वो कोर्सेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10वीं के बाद क्या विषय लेने पड़ेंगे और कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, किस कोर्स में आपको प्रवेश लेना है, ये हमारे श्रोताओं को?
0: जी, इसमें GNM जो कोर्स होता है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, वो आप 12th के बाद में कर सकते हैं। ये तीन साल का कोर्स होता है, इसको करके आप नर्सिंग के कार्य में जुड़ सकते हैं। इसमें दूसरा एक कोर्स है BSc नर्सिंग है, जो कि एक डिग्री कोर्स है, उसको कर आप भी मतलब नर्सिंग से जुड़ेंगे। पर जब BSc अगर आप करते हैं तो आप उसमें ट्यूटर का काम भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में काम भी कर सकते हैं, और आप नर्सिंग का काम तो आप कर ही सकते हैं।
1: ये जो कोर्स है इनके जरिए
0: इनको करने के लिए सर बेसिकली क्या है कि जो BSc नर्सिंग का कोर्स है उसको करने के लिए आपको 12वीं में बायो होना जरूरी है, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है, और उसको करने के बाद 4.5 साल का ये कोर्स होता है, उसको करके आप भी आप
1: क्या करियर की संभावनाएं देखते हैं आप युवाओं के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में?
0: सर इसमें ये मतलब आज चिकित्सा क्षेत्र में बहुत स्कोप है, चिकित्सा क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण होना, कई लोगों अब आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की बीमारियां भी काफी बढ़ रही है, तो इस स्कोप में कभी ये काम खत्म होने वाला स्कोप नहीं है। तो अगर आप कर रहे हो तो ये आपका हाथ का हुनर है, आप इसको करके मतलब आपकी लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन कर, आप ये देख सकते हैं कि अगर आप नर्सिंग का कार्य करते हैं तो आप जिसे इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं तो भी आप अपना आजीविका का अर्निंग कर सकते हैं, साथ में आप सेवा भाव रख सकते हैं तो मरीज की सेवा में भी आप अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं। और एक मौका मिलता है आदमी को इससे जुड़कर कि आम समाज सेवा थोड़ा इस तरह की चीजों को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि अगर इस फील्ड की बात करें तो नर्सिंग में कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब विशेषताएं ले सकते हैं चीजों को लेकर आगे उस क्षेत्र में कार्य करके। जैसे

0: आप बोले तो आईसीयू है, ओटी है, डायलिसिस है और कार्डियक केयर है। इन क्षेत्रों में आप जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो नर्सिंग के माध्यम से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं और आगे भविष्य में आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर जो नर्सिंग कर्मी हैं उनके साथ साथ क्या कहना चाहेंगे आप हमारे युवाओं के लिए, किस तरह से नर्सिंग को आप देखें, किस तरह से नर्सिंग कर्मियों का सम्मान करें और इस पेशे से जुड़े?
0: जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर सभी नर्सिंग स्टाफ को, जो नर्सेस कर्मी हैं, अपने समर्पण, मेहनत और सेवा भाव से अगर आप कार्य करेंगे तो इस फील्ड में आप बहुत ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे और अपनी ईमानदारी निष्ठा के साथ में ये कार्य करेंगे तो मेरा ये है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस चलते जाइए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल जी। तो पुष्पेंद्र शर्मा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर आप आकाशवाणी कोटा के स्टूडियो में आए और हमारे युवा श्रोताओं को आपने नर्सिंग कैरियर के बारे में और नर्सिंग के क्षेत्र के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सेवा का दूसरा नाम नर्सिंग विषय पर आधारित अभी हमने ये भेंटवार्ता पुष्पेंद्र शर्मा जी से सुनी। दोस्तों, आज की बातचीत ने यह एहसास दिलाया कि नर्स केवल स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा नहीं है बल्कि संवेदनाओं, सहानुभूति और समर्पण का जीवंत मिसाल है। उनकी मुस्कान मरीज के चेहरे पर उम्मीद लाती है और उनका सेवा भाव मानवता को नई शक्ति देता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आइए हम सभी उन समर्पित नर्सों को नमन करें जो दिन रात मानव सेवा के इस पुनित कार्य में जुटी रहती हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: दोस्तों, FM 102 103.6 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और चलते हैं विज्ञान धारा की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घड़ी की जो दुनिया की सबसे सटीक घड़ी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक क्लॉक की।
1: राहुल, जहाँ आम घड़ियाँ सेकंड, मिनट और घंटे दिखाती है, वहीं एटॉमिक क्लॉक समय को इतनी सटीकता से मापती है कि करोड़ों वर्षों में भी शायद ही एक सेकंड भी इससे गलती हो।
0: बिल्कुल, लेकिन एक चीज है, एक सवाल है कि इसका नाम एटॉमिक क्यों है।
1: सवाल तो मन में सबका आया होगा कि आखिर इसका नाम, इस घड़ी का नाम एटॉमिक रखा क्यों गया। तो ये भी हम दोस्तों को बता देते हैं कि ये जो घड़ी है ना, ये परमाणु यानी एटम के कंपन पर आधारित होती है।
0: अच्छा।
1: और खास तौर पर सीजियम परमाणु का उपयोग इसमें किया जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, मतलब इस घड़ी में कोई पेंडुलम नहीं चलता है, जैसे सामान्य घड़ियों में स्प्रिंग या क्वार्ट्ज क्रिस्टल काम करता है ना, वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें एटॉमिक क्लॉक में परमाणु की ऊर्जा के बदलाव से बनने वाली तरंगों को मापा जाता है। और दोस्तों, ये सुनकर तो लगता नहीं है कि मनीषा कि जैसे विज्ञान कोई जादुई मशीन नहीं हो गई है। यहाँ पे मतलब हर चीज का कितना उल्टा पुल्टा, कितना घुमावदार चीजें हैं, मतलब हमारी सोच से ही परे है ये सब चीजें।
1: और सच में इसकी जरूरत भी है ना, कई महत्वपूर्ण जगहों पर पड़ती है।
0: जैसे कि
1: वो भी तुम्हें बताती हूँ। उदाहरण के लिए GPS सिस्टम, अगर एटॉमिक क्लॉक ना हो तो हमारे मोबाइल में सही लोकेशन ही नहीं आ पाएगी, बता तुम्हें।
0: अच्छा, मतलब दोस्तों जैसे गूगल मैप्स भी हमारा जो काम करता है, जो वर्क करता है, वो भी इसी पर आधारित होता है, अगर मैं सही हूँ तो। मनीषा
1: बिल्कुल सही हो, और ये तो हमें पता ही नहीं था पहले तो।
0: हाँ, हमारे दोस्तों नहीं को पता भी था, नहीं पता था। ये आज ही मुझे पता चला और मुझे आज ही सुनने को मिला, तो मैंने दोस्तों से भी शेयर किया। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है?
1: इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान, इंटरनेट नेटवर्क और वैज्ञानिक प्रयोगों में भी इसका उपयोग होता है, पता है तुम्हें।
0: क्या बात है, मतलब हमारे भारत में एटॉमिक क्लॉक अगर है दोस्तों, तो इसका उपयोग हर जगह पर होता है। और हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत के कई वैज्ञानिक संस्थानों में भी इसका उपयोग होता है, ताकि देश का मानक समय बिल्कुल सही रखा जा सके। पर मनीषा, एक सवाल है मेरा, ये अगर इतनी सटीक है तो क्या हमारी हाथ की जो घड़ियां हैं वो भी एटॉमिक क्लॉक जैसी बन सकती है फ्यूचर में?
1: बन तो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है,
0: वो भी बहुत तेजी से।
1: तकनीक जो है तेजी से बढ़ रही है दिनों दिन। आज कुछ रेडियो नियंत्रित घड़ियां एटॉमिक क्लॉक से समय लेकर खुद को अपडेट करती है, पता है तुम्हें।
0: यानी कि भविष्य में समय की गलती लगभग खत्म हो सकती है।

होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एटॉमिक क्लॉक केवल एक घड़ी नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान की रीढ़ है और समय की सटीकता की प्रगति की पहचान है। तो दोस्तों, फिलहाल समय फिर से हो चला है एक गाने का, तो ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको ये अगला गाना।

0: सकें।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बदलते समय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि हुनर भी बेहद जरूरी है। तकनीक और कौशल के इस दौर में जो सीखता है वही आगे बढ़ता है।
0: और इसी सोच के साथ सरकार ने पीएम सेतु योजना शुरू की है ताकि देश के जो आईटीआईज हैं, संस्थान हैं, उनको आधुनिक बनाया जा सके। इस योजना के तहत देश भर में लगभग 1000 से ज्यादा जो है सरकार आईटीआई को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
1: और दोस्तों, इस योजना की सबसे खास बात आप जानते हैं क्या है कि इसमें उद्योगों यानी कि कंपनियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि
0: जो नई तकनीक है, डिजिटल स्किल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स हैं, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक मशीनों से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएं।
1: और दोस्तों, पीएम योजना को हब एंड स्पोक मॉडल के पर लागू किया जाएगा जिसके अंतर्गत 200 बड़े आईआईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है। युवाओं के लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है। यदि सही दिशा, सही प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक का साथ मिले तो भारत का युवा दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है।
1: फिलहाल दोस्तों, ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आज की शाम का अगला नगमा।

0: दोस्तों, प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार दिए हैं। जी हाँ, स्वच्छ हवा, औषधियाँ और हरियाली, और इन सब का आधार है हमारे पेड़ पौधे।
1: लेकिन दोस्तों, आज बदलते पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण के कारण पौधों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ता जा रहा है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर इंसानों की सेहत पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों की सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है? क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो भोजन नहीं होगा, स्वच्छ हवा नहीं होगी और पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा।
1: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में। एक ऐसा दिन जो हमें प्रकृति से जुड़ने का और हरियाली बचाने का संदेश देता है। दोस्तों, आज जो हम दिवस मना रहे हैं, इसका उद्देश्य पौधों की सुरक्षा के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।
0: दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम विकास की दौड़ तो दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है।
1: जी हाँ दोस्तों, कटते पेड़, बढ़ता प्रदूषण और बदलता मौसम हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आज नहीं संभले तो आने वाला कल मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, पौधे केवल पर्यावरण की शोभा नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का आधार भी है।
0: और दोस्तों, युवा शक्ति अगर चाहे ना तो धरती की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए अपने जन्मदिन पर कोई भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक पौधा जरूर लगाइए। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कीजिए दोस्तों, पानी बचाइए, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे बदलाव हैं, यही बड़ी कामयाबी हमें दिलवाएंगे।

0: दोस्तों, आपके साथ बातें करते करते समय का कभी पता नहीं चलता और आपसे बातें करने से कभी हमारा दिल भी नहीं भरता। लेकिन हम समय में बंधे हुए हैं, इस कारण जितना समय आपके साथ मिलता है उतने समय का हम लोग भरपूर आनंद लेते हैं। क्यों मनीषा?
1: बिल्कुल। और देखो ना राहुल, की बातें करते करते कब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, अब समय आ ही गया है आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम युवाणी को यहीं विराम देने का। उम्मीद है कि आज की बातचीत ने आपके दिन को थोड़ा और खास बनाया होगा,
1: क्योंकि अब हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुइयां भी टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही हैं और इशारा कर रही हैं कि अब हमारी वाणी को यहीं विराम दें। तो दोस्तों, चलते चलते बस आपसे इतना ही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दीजिए अनुमति मनीषा को
0: और राहुल को।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस

0: पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में फिल्म वारिस का गीत सुनिए। वर्मा मलिक ने इसे लिखा है और उत्तम जगदीश का संगीत।

कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में आइए सलामी फिल्म का एक गीत सुनते हैं। नदीम श्रवण का संगीत है और गीत के बोल हैं समीर के।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाजों में मन फिल्म का एक गाना। गीतकार हैं समीर और संगीतकार संजीव दर्शन।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: इस प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, सुदेश भोसले, विनोद राठौड़ और साथियों की आवाजों में फिल्म हद कर दी आपने से। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन बनाई है आनंद राज।

0: दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, 6:27 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से सुनेंगे।

0: छह बजने वाले हैं। थोड़ी देर में पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे

0: वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रोशनास कराना, हल्का इल्म अदब के सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिख।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार, बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र बदले नहीं जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कहां चूक हुई, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई को जांच दी गई है।
4: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।
3: एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा इस साल 20 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में केवल वही 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए 16 से 30 मई तक का समय दिया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए केवाईसी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपडेट करना अनिवार्य है। नीति आयोग ने राजस्थान को एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल बताया है। आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक की समेकित शिक्षा उपलब्ध

0: बनाने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के एकीकृत विद्यालयों में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 35% है। वर्तमान में प्रदेश के 27,889 स्कूल प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को कहा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रावधानों को लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब राजस्थानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसकी शैक्षणिक स्वीकार्यता पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि राजस्थानी को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और प्रारंभिक स्तर पर इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। नई दिल्ली स्थित एम्स और अन्य कई केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही कोटा और बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये टीम इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों में संक्रमण के कारणों और सर्जरी की प्रक्रियाओं की गहन जांच करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। श्री बिरला ने प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सख्त प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को भी कहा जो सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का सुधार रोडमैप तैयार करेगी। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर लिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी और हरित ऊर्जा की ओर रुख करने का आग्रह किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से शोध और नवाचारों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री बागड़े आज सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा के श्रेष्ठ मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने को कहा। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ कार्यालय और शोधार्थी बालक छात्रावासों का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सलूम्बर जिले के ओड़ा और अदवास सहित कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां लोक कलाकारों ने गीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं को सरल भाषा में समझाया। बाड़मेर जिले में भी इस अभियान के प्रति आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन

0: को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आमजन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: जोधपुर आज अपना 568वां स्थापना दिवस पारंपरिक शौर्य और उल्लास के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मारवाड़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन करते हुए जोधपुर वासियों को बधाई दी। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इससे पहले मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और अब मौसम। प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल यहां दिन का पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में 45 डिग्री से ऊपर तापमान मापा गया। सबसे अधिक 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी जिलों में भीषण लू का दौर अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां दर्शाई जा सकती है।
1: इस बीच मौसम का एक और रंग आज देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में दोपहर बाद बारिश हुई, इससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली। भरतपुर में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं धौलपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू सहित कुछ अन्य जिलों में अंधड़ तथा वर्षा के समाचार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने नर्सिंग स्टाफ की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। बांसवाड़ा जिले में चंदन वन विकसित किया जाएगा। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि राज्य के सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में चंदन के पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग की ओर से इसके लिए बजट प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और इसी मानसून सत्र में वृक्षारोपण का काम शुरू हो जाएगा। जिले में ये वन घंटाला स्थित झातलिया खंड में लगाया जाएगा। ये वन 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने बांसवाड़ा पहुंचकर घंटाला क्षेत्र की झातलिया साइट का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सफेद चंदन के पौधे लगाने की योजना है। चंदन के पौधों के साथ ही दूसरे पौधे भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि चंदन अर्ध पराजीवी पौधा होता है। इसके अंकुरण के लिए दूसरे होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं।

0: होस्ट प्लांट के रूप में मूंग, अरहर, हेज, करंज और मेहंदी के पौधे काम में लिए जा सकते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत जिले में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एलईडी वैन के माध्यम से रात्रि चौपाल में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जिले के सज्जनगढ़, पीपलखूट, मोरवानिया, टामटिया, नालचौकी और सागबारी सहित कई स्थानों पर रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को उम्बाड़ा गांव में मौके पर ही लाभ दिया गया। इससे पशुपालकों के चेहरे खिल उठे। ग्राम रथ अभियान में कलाकारों के जत्थे प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि ये अभियान मिशन मोड पर संचालित हो रहा है। इसके तहत गांव-गांव में जन जागरूकता लाई जा रही है। इससे बालिकाएं समूह में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर एचपीवी टीका लगवा रही हैं। तलवाड़ा की डॉक्टर अर्जुन ढिंडोर ने बताया कि अभियान में आशा सहयोगिनी और साथिन भी पात्र बालिकाओं और अभिभावकों की समझाइश कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों आबापुरा क्षेत्र के गामदा, झरनिया और चाचाकोटा सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने झरनिया गांव में लंबे समय से बंद पड़ी पनघट योजना को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए। वहां नया बोरिंग खुदवाकर पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने को भी कहा। इसी तरह गामदा गांव में भी पनघट योजना के तहत बंद पड़े जल स्रोत शुरू करने के निर्देश दिए गए। जनगणना प्रक्रिया 2027 के तहत इन दिनों जिले में स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने बताया कि ये प्रणाली नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देती है। इससे जनगणना को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। 15 मई तक आम लोगों को स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत जनगणना पोर्टल पर नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का काम करेंगे। इस काम के लिए जिले में 3,413 प्रगणक और 593 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पृथ्वी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही शिक्षा, समानता और समाज सुधार के लिए किए गए उनके प्रेरणादायी कामों को याद किया गया। अंबेडकर जयंती के मौके पर भी जिले में कई कार्यक्रम रखे गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संविधान को जाने विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता हुई। साथ ही विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों को भी शामिल किया गया। यहां श्रमदान कर कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, पेपर लीक री शंका विचे नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, मामलारी जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूला माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो, पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बेधर 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदों लागोड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात, बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पेपर लीक वेवन रिशंका माए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दीनी है। एनटीए

0: बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचार अंसागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पेपर लीक फेवंडी शंका माए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दीनी है। एनटीए री ओरू सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बताई जियो के ओ फैसलो विद्यार्थियों रा भला और इम्तिहान माथे भरोसा न ध्यान रखता थका करी जियो है। एनटीए रे मुजब सरकार पेपर लीक रा आरोपान री जांच सारू मामलो सीबीआई ने सौंपण रो फैसलो कीनो है। एनटीए परीक्षा री नवी तिथि रो ऐलान बेगोई करेला। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार री जानकारी एर मई 2026 रा परीक्षा केंद्र माए बदलाव नी फैला। एजेंसी रे मुजब परीक्षा ओजू देवन सारू पाछो नाम मनावण और फीस जमा करावण री जरूरत नी फैला। एनटीए रा महानिदेशक अभिषेक सिंह खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के पूरो पेपर लीक नी भयो पर कुछ सवाल लीक भया। वे कहो के परीक्षा री प्रक्रिया माए चूक री ठा करण सारू सीबीआई ने जांच दीरी जी है।
1: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी। और सीबीआई जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेंगे। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।
0: इन बीच एसआई भर्ती परीक्षा 2021 इन साल 20 सितंबर न ओजू ली जावेला। इनमें पहली भी परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला करीब 383,000 उम्मीदवार शामिल फै सकेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग इंसारू अर्जियां माए जरूरी बदलाव बाबत 16-30 मई ताई री मियाद तय कीनी है। उम्मीदवार जरूरी फेवंडी सूरत माए मोबाइल नंबर, ईमेल और पतारी जानकारी बदल सकेला। नीति आयोग राजस्थान माए भणाई लिखाई रा मौजूदा हालात री सराहना करता थका एकीकृत शिक्षा रा हलका माए राज्य ने देश माए अव्वल बतायो है। आयोग कानून जारी रपट रे मुजब राज्य पहली बारहवीं कक्षा ताई रे समय के शिक्षा मुहैया करावन रे मामला माए देश भर माए अव्वल है। रपट रे मुजब देश री कुल एकीकृत स्कूलना माए राजस्थान री हिस्सेदारी करीब 35% है। देश माए पहले बारहवीं कक्षा ताई री तालीम देवन वाली हर तीजी स्कूल राज्य माए चाल रही है। फिलहाल प्रदेश की 27,889 स्कूल माए प्राइमरी उ सीनियर सेकेंडरी ताई री शिक्षा एक ही ठौर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने प्रदेश की सगली सरकारी और गैर सरकारी स्कूल माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण रे बारा माए नीति बनावन रा हुक्म दीना है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहतारी पीठ कहो कि नवी शिक्षा नीति 2020 रा तहत मायड बोली या भाषा आधारित भणाई लिखाई रा प्रावधान लागू करनो राज्य रो संवैधानिक दायित्व है। अदालत कहो कि जद राजस्थानी विश्वविद्यालय माए पढ़ाई जा रही है तो इनने स्कूला माए पढ़ावण ने स्वीकार करण माथे कोई सवाल ही नहीं होवणो चाहिए। पीठ राजस्थानी ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रा तौर मान्यता देवन रो हुक्म देता थका कहो कि इनने शुरुआती लेवल माथे भणाई लिखाई रा जरिया रा तौर अपनावन रे बारा माए विचार करियो जावणो चाहिए। नई दिल्ली रा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और दूजा कुछ केंद्रीय चिकित्सा संस्थाना रा जानकारा री टीम कोटा और बूंदी रा अस्पतालां रो दौरो करेला। टीम आ अस्पताल माए ऑपरेशन थिएटर माए लाडला दिनाभ्यास संक्रमण रा कारण और ऑपरेशन री प्रक्रिया रे बारा माए जांच करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा माए चिकित्सा विभाग रा आला अहलकारा सागे मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। श्री बिरला कोटा रा सरकारी अस्पताल माए लाडला दिना जापा वाली कुछ लुगाइया री मौत रा मामला ने घणो गंभीर बताता थका अहलकारा ने आइंदा एड़ा वाकया रोकण सारू करड़ा प्रोटोकॉल बनावन रा हुक्म दीना। लोकसभा अध्यक्ष सरकारी अस्पतालां रो दौरो कर व्यवस्था माए जरूरी सुधार रो रोड मैप तैयार करण सारू संभागीय आयुक्त री सदारत माए खास समिति बनावन बाबती कहो।

0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मध्य पूर्व में चल रही तनातनी बीच भारत देश में रसोई गैस उत्पादन करीब 36,000 टन रोजिनारा लेवल नो बधार 54,000 टन करती नो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में सालाना व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 में आ जानकारी दीनी। वह कहो कि कई देशों ने लारला कुछ महीना में कीमता में बढ़ोतरी और ईंधन री कमी रो सामो करनो पड़ियो, जबकि भारत घरेलू मूल में थरता राखण में कामयाब रहो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विश्वविद्यालयों शोध और नवाचारा माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो है। वे आज सीकर रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में अहलकारा सागे मीटिंग में बोल रहा है। इस मौके श्री बागड़े विश्वविद्यालय में विकास रा न्यारा न्यारा काम जनता ने सौंपया। वह विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए रा खर्च बनाई जा स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ रा दफ्तर और शोध करण वाला विद्यार्थियों सारू बालक छात्रावास रो उद्घाटन किनो। वठे अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान श्री बागड़े नवी शिक्षा नीति ने असरदार तरीका लागू करण बाबत कहो। राज्य सरकार कानी जनतारा भला सारू चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी जनता ताई पूगावन सारू ग्राम रथ अभियान चलायो जा रियो है। इनाते सलूमर जिला रा ओडा और अदवास समेत कई गांव माए कार्यक्रम रखी जा, जठे लोक कलाकार योजना वाली जानकारी गीता और नुक्कड़ नाटका रे जरिए आसान भाषा माए दीनी। बाड़मेर जिला में आई ई अभियान सारू खास उमाव नजर आ रियो है। और ब्यूरो महाना खबर नवीसू।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आम जन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित LED ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: जोधपुर रो 568वां स्थापना दिवस आज हरा कुमाऊं सागे मनाई चियो। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में राखी जा खास जलसा में न्यारा न्यारा हलका में चोखो काम करने वाला 19 जना ने मारवाड़ रत्न नवाजी चिया। इनु पहले मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में शहीदा ने फूल चढ़ार सिरथा भाव सागर याद करी चिया। इस मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मारवाड़ री ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने नमन करता थका जनता ने बधाई दीनी। ध्यान जोग है कि राव जोधा जी साल 1459 में जोधपुर बसायो हो। अरब मौसम प्रदेश में पाकिस्तान री सरहद लागुड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी बीच लू बाज रही है। आज बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। जैसलमेर और बालोतरा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ऊंचो रहो। इन अलावा बीकानेर और जोधपुर में लू बाज रही है। कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में पड़ रहा जोरदार तावड़ा जिंदगी माथे असर पड़ रहा है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा आकाशवाणी ने बतायो कि राज्य रा आतुणी हलका में लू रो दौर आवता 3-4 दिन तक चालतो रहवन रा आसार है।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बरती जा सकती है।
0: इन बीच राज्य रा उत्तराद उगनी हलका माए आज हुई बिरखाऊ गर्मी थोड़ी सत्ता मिली। भरतपुर माए दोपहर पाछे बरसात हुई। धौलपुर, अलवर, चूरू और झुंझुनू समेत कुछ जिला माए अंधड़ सागर बिरखा रा समाचार है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाई चियो।

0: नुआ जमाना री मरहम पट्टी री शुरुआत करण वाला फ्लोरेंस नाइटिंगल री जयंती रा सिलसिला माए ओ दिवस मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखी जा जलसा माए 15 नर्सिंग पेशेवरा ने साल 2026 सारू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल इनाम देर नवाजा। प्रदेश में आई नर्स दिवस रे मौके कई कार्यक्रम राखी जिया। झुंझुनूरा बीडीके अस्पताल में चोखो काम करने वाला नर्सिंग कर्मचारियां रोमान करी जियो। इस मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग नर्सिंग कर्मचारियां री निस्वार्थ सेवा री सराहना कीनी।
1: आज जो हमारी नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बच्चियों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई है और इस अवसर पर जो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है उसमें वो स्वेच्छा से रक्तदान भी करके समाज में जो समाज सेवा का रक्तदान का जो मैसेज है वो दे रहे हैं और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय हमारी जो बेटियां हैं और ज्यादा स्वस्थ बने सफल बने और इस अवसर पर नर्सिंग डे के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। पेपर लीक री शंका बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामला री जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूला में राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बढ़ 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदू लागोड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब हमारे किसान भाई बहन अपना कार्यक्रम सुनेंगे। चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनबा वाला संदा किसान बेन भाया के ताई संतोष बना की घनी घनी राम राम। किसान बेन भाया अबार खेत खाली हो गया और इस समय आपन के ताई गर्मी की गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए और आपना जो बचा हुआ फसल अवशेष छ वहाँ को सही तरीका से प्रबंधन आपन के ताई करनी चाहिए। फसल कटाई के बाद जो भी खेत में बचा हुआ हिस्सा जैसा पराली नोड़ाया पत्ता ये सब हो जाए यहाँ के ताई फसल अवशेष खेव जाए। बचे हुई नोड़ाया या पराली सु आपन सही ढंग से प्रबंधन करके पिसा कमा सके जा या तो बात होगी ना। देखो आम का आम और गुठलिया का दाम अक्सर नोड़ाया के ताई किसान बेन भाई खेत में ही आग लगा दे जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रो छ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो रही छ और जो मिट्टी में पोषक तत्व की भी कमी होती जा रही है। साथ ही मिट्टी में जो मित्र कीट हो वजह वो भी नष्ट हो जावे छ। पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर भी इको बुरो असर पड़े छ और जहाँ पर नोड़ाया में आग लगाओ जाए वहाँ को तापमान भी बढ़तो जा रही है इससे गर्मी भी बढ़े छ। तो बेन भाइयों बचा हुआ जो फसल अवशेष हो जाए वहाँ को अपन सही ढंग से प्रबंधन करा या सो अपन कंपोस्ट खाद बना सके जा जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। इसे भूसो भी बना सके जा जिससे अपन एक ताई बेच भी सके जा और पशु के ताई भी अपन खिला सके जा और ये फसल अवशेष के ताई मल्चिंग करके यानी खेत में बिछा देवा जिससे नमी बनी रहेगी और खर पतवार भी कम होगा। और आजकल तो बेन भाइयों पराली से जैव ईंधन भी तैयार हो वजह मशरूम उगावा के लिए बेड भी तैयार किया जावे कार्डबोर्ड और कागज भी बनाया जावे। तो बेन भाइयों सही ढंग से अगर आपन

प्रबंधन करेंगे तो आपन का खूब सारा लाभ हो जाए। एक तो मृदा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि होगी, दूसरो जल संरक्षण भी बढ़िया होगा और जिस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ेगी और जिस सिंचाई की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी, तीसरो रासायनिक खाद पर होबा वाला खर्च से आपन बच जाऊंगा और चौथो पर्यावरण प्रदूषण में कमी आओगी। तो बहन भाइयों आपन कताई फसल अवशेष को सही प्रबंधन करनो चाहे, फसल अवशेष कचरो कोई न बल्कि यो एक सोनो चाहे, इको सही तरीका से प्रबंधन करो जावे तो यो केवल पर्यावरण कताई नहीं बचाओगे बल्कि किसाना की आय में वृद्धि करोगे। आज का समय में कृषि और पर्यावरण को संतुलन कताई बनाया राखवा के लिए फसल अवशेष प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी छे। बहन भाइयों हर दिवस हर दिन आपन कोई न कोई दिवस मनावा छा और आज आपन मना रहा छा अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। यो दिवस हर साल 12 महीने मनाया जावे छे। आपन जो भी भोजन करे छा उको 80% हिस्सो पौधा से आवे छे। पौधा को स्वस्थ रहो बहुत ज्यादा जरूरी छे। पर्यावरण प्रदूषण भी आपन देखा जा बढ़तो जा रहे छे, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहे छे, साथ ही पेड़ पौधा कटता जा रहा छे जिससे पौधा का स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ रहे छे। पौधा का तई रोगा और कीटा से बचावा के लिए रासायनिक जो खाद हो वजह उको आपन कम प्रयोग करा, जैविक खाद और जैविक कीटनाशक को प्रयोग करा। अगर पौधा स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन भी बढ़िया होगा, इसलिए आपन कताई पौधा को स्वस्थ रहो आपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपन सब जाना चाहे बहन भाइयों को हर साल 40% तक फसल कीट और बीमारियों के कारण नष्ट हो जावे छे जिससे किसानान की जो आर्थिक स्थिति छे उमा नुकसान हो वजह, इसलिए आपन प्राकृतिक खेती करा, जैविक खेती करा जिससे पौधा और बीमारियां पौधा में बीमारियां न हो सके। मिट्टी की जांच समय समय पर करावा, फसल चक्र कताएं अपनावा। अगर पौधा में कोई रोग या कीट लग जावे तो को तुरंत उपचार करा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावा, अपना जन्मदिवस पर या शादी की सालगिरह पर पेड़ लगावा, उतना ही बड़ो करा। और अगर कोई ताई उपहार देनो चे तो वो भी आपन एक छोटो पौधो दे सके चा। पौधो स्वस्थ रहोगो तो आपन भी स्वस्थ रहूंगा। पौधा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल किसाना की कोई ना आपनी भी छे। जैसा आपन अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखा चाहे वैसा ही आपन कताई पौधा का स्वास्थ्य को भी ध्यान रखनो छे। पेड़ पौधा लगावा, बाग बगीचा लगावा और इधर धरती कताई हरियो भरियो बनावा।

वाजी वाह, आनंद आ गया ना। गीत संगीत तो हो गए, ऐसा जगह अपन था नाच बाप मजबूर कर दे वजह। और बहन भाइयों यो गीत गायो जो सीमा मिश्रा ना और साथी ना। अब आनंद लेवा आपन कुछ जानकारियां को, तो चौपाल कार्यक्रम से अपन समय समय पर जानकारी लेकर का आता रहे वचा। तो आज को विशेष गर्मी में पशुओं में होबा वाला सामान्य रोग और समाधान जानकारी दे रहा है डॉक्टर घनश्याम मीणा। तो आओ अपन सुना यह महत्वपूर्ण जानकारी। चौपाल कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है किसान बहन भाइयों। और आज आपने साथ

0: कार्यक्रम मौजूद छ डॉक्टर घनश्याम मीणा आचार्य पशु पालन कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा कोटा यहाँ से बातचीत करेंगा। डॉक्टर साहब आपको कार्यक्रम में घनो घनो स्वागत है। राम राम।
1: राम राम साहब।
0: तो डॉक्टर साहब अबार आपन जाना चाहे गर्मी खूब पड़ रही है और बार मनख्या की हालत खराब हो रही है गर्मी में जब लू भी चल रही है तो इस समय अपना जो ढाणा डोर छ अपना जो पशु छ गाय भेसा छ वहाँ की इस समय अपन कताई कई बातों को ध्यान रखनी चाहिए कसा वहाँ की सुरक्षा करनी चाहिए।
1: किसान भाइयों जैसे हम लोग अपने खुद के लिए पीने का जो पानी है वो ठंडा पसंद करते हैं ऐसे पशुओं को भी नॉर्मल पानी हो ट्यूबवेल का पानी हो नल का पानी हैंडपंप का पानी गर्म पानी उसको नहीं पिलाएं। दूसरी चीज गर्मी से बचाना है कोशिश करें किसी पेड़ की छाया में बांधे या कोई छप्पर का जो घास फूस का छप्पर है उसकी छाया में बांधे। अगर आपके पास सुविधा है तो पंखा कूलर अगर पशु ज्यादा है तो आप फॉगर भी लगा सकते हैं।
0: अच्छा
1: तो जितनी आप पशुओं को सुविधा देंगे उत्पादन भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो गर्मियों में विशेष रूप से जो चीज है वो है कि पशुओं को गर्मी से बचाना है लू से बचाना है।
0: बिल्कुल जैसा कि आपने बात करी लू से बचाना है तो लू से बचाव करवा के लिए पशुपालक भाई काय करा।
1: आपका जो पशुओं का जो आवास है उसकी जो खिड़कियां है उनपे कुछ बोरी के गीले टाट लटका दें या घास फूस की टाटी लटका के उनको थोड़ा गीला कर दें ताकि अंदर ठंडी हवा आवे। कुछ कूलर भी लगा सकते हैं फॉगर लगा सकते हैं। इसके अलावा पशुओं को नहलाए सुबह शाम पशुओं को नहला दे। अगर आपके पास भैंस है तो कोई पानी का कोई तालाब है उसमें उनको दिन में दोपहर के समय दिन में उनको उसमें छोड़ दें ताकि वो गर्मी से जो है अपना बचाव कर सकती है।
0: बिल्कुल
1: भैंस और जो अपनी क्रॉस ब्रेड गाय होती है उनको गर्मी में ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनको सांस लेने में जो है दिक्कत आती है। विशेष रूप से भैंसों के शरीर में पसीने को बाहर निकालने की जो है ग्रंथि कम होती है इसलिए भैंसों को बहुत ज्यादा समस्या आती है।
0: अच्छा।
1: तो भैंसों को कहीं धूप में तालाब में छोड़ दें। तालाब नहीं है तो फॉगर की अगर व्यवस्था हो सकती है तो मिस्ट कूलिंग सिस्टम या फॉगर फवारे जिसको कहते हैं वो लगा दें वरना उनको जो है नहला दें उससे भी उनकी गर्मी कम होती है।
0: बिल्कुल जैसा अपन अपनी गर्मी कताई कम करवा के लिए कूलर पंखा चलाओ जा वैसा अपना ढान डोरा के लिए भी अपन कूलर पंखा लगा सका जा।
1: जी
0: अब जैसा आपने बात करी कि भाई गर्मी में जो ना जो दूध उत्पादन पर भी फर्क पड़ जा
1: जी
0: तो ये गर्मी का मौसम दूध उत्पादन बढ़िया रह सके इसलिए किसान भाई काय करा।
1: किसान भाइयों दूध उत्पादन बढ़िया रहे तो गर्मी में पशुओं को जो खिलाना है चारा दाना जो भी खिलाना है वो ठंडे मौसम में खिलाए।
0: अच्छा
1: शाम सुबह ही खिलाए क्योंकि दिन में खिलाने से भी पशु को पचाने के लिए भी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उससे पशु को गर्मी ज्यादा महसूस होती है। तो पशुओं को शाम सुबह ठंडे मौसम में खिलाएं। पशु को हरा चारा जरूर दें। हरा चारा कुट्टी करके भूसे में मिला के फिर पशु को खिलाएं और पानी हमेशा ताजा पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। नमक पशु को अवश्य या तो पशु आहार बाटे में मिला के और नमक दे दें या फिर संतुलित पशु आहार जो बनाते हैं उसमें नमक और खनिज मिश्रण मिनरल मिक्सचर वो आप जरूर डालें ताकि पशु जो शरीर से मिनरल्स जो निकलते हैं उसकी पूर्ति उससे कर सके।
0: बिल्कुल अब जैसा गर्मी का मौसम है माखी मच्छर भी बहुत हो जाओ जा तो उससे बचाव के लिए काय करनी चाहिए।
1: माखी मच्छर से बचाव के लिए इंसेक्टीसाइड जो है ना कीटनाशक दवाएं उनका स्प्रे करें आवास में और खिड़की दरवाजों पर कुछ पर्दे वर्दे लटका दें। अगर उसमें आप जो है मच्छर जाली लग सकती है कहीं तो मच्छर जाली लगा दें। इस मौसम में वैसे थोड़ा सा मच्छर मक्खी कम रहते हैं बरसात में ज्यादा होते हैं। कुछ थोड़ी बहुत जो अगर है तो कुछ धुआं भी कर सकते हैं तो इस तरह से उनका मच्छर मक्खियों से आपको बचाव करना है। पशु आवास साफ रखे उसमें जो जाड़े वगैरह वो समय समय पर साफ करते रहे।
0: बिल्कुल अब जैसा कि गर्मी बहुत हो रही है तो ऐसा सुनवा में आओ कि गर्मी में बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाए पशुओं में तो काई काई बीमारियां हो सका जा और काई काई यहाँ का लक्षण जा।
1: किसान भाइयों पशुओं में गर्मी में कुछ टीके लगते हैं तो वो टीके आप लगवा ले। अभी गर्मी का जो मौसम है उसमें एक टीका लगेगा आपका खुरपका मुंहपका रोग का। खुरपका मुंहपका रोग या तो आता है गर्मियों में या आता है सर्दियों में तो उसका टीका अगर आपने नहीं लगवाया हो तो उसको लगवा लें। एक गर्मी में बरसात से पहले टीके लगते हैं वो लगता है लंगड़ा बुखार का और एक लगता है गलगोंटू का। तो गलगोंटू और लंगड़ा बुखार आपके पशुओं को नहीं हो उसके टीके अभी गर्मियों में लगाए जाते हैं।
0: अच्छा
1: तो उसके टीके जो है आप लगवा लें तो ताकि टीकाकरण अगर हो गया पशु को तो होने वाली जो बीमारी है वो आपके पशु को नहीं होगी।
0: अच्छा तो कैसी कैसी बीमारियां हो सकती है इस समय।
1: इस समय गलगोटू एक रोग होता है और एक होता है लंगड़ा।

0: बुखार,
1: हाँ।
0: इसके अलावा एक होता है खुर पका मुंह पका, ये तीन ही रोग ही पशुओं में ज्यादा होते हैं।
1: अच्छा,
0: गर्मियों में एक जो सबसे ज्यादा मुख्य समस्या होती है पशुओं में वो होती है परजीवियों की,
1: हाँ।
0: परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों का खून चूसते हैं उनको कहते हैं परजीवी। ये भी दो तरह के होते हैं, एक जो शरीर के ऊपर से दिखाई देते हैं, एक दूसरे जो शरीर के अंदर होते हैं वो आंखों से अपन को दिखते नहीं है। ऊपर से जो दिखाई देते हैं वो चिचड़ा गिडोड़ा जू तरह के होते हैं, उन्हें भी आपको जो है समय समय पर मारने का प्रबंध करना है। एक दवाई आती है साइपरमेथ्रिन या डेल्टा मेथ्रिन, उसको 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई घोड़ के और पशु के ऊपर पोंछा लगाना है कपड़े से, ताकि वो परजीवी मर जाए। लेकिन आप पशु के शरीर के ऊपर तो मार दिए, लेकिन उसके आवास में भी मारना है, नहीं तो वापस ऊपर से आ जाएंगे आवास में से। तो पशु के आवास में भी 1 लीटर पानी में 5 ml दवाई घोड़ के और पशु के आवास में छिड़काव करें,
1: अच्छा,
0: ताकि आवास में भी खत्म हो जाए। इसमें कुछ रह जाते हैं, कहीं इधर उधर छेदों में रह जाते हैं, कहीं बिलों में, कहीं कोई अंडे रह जाते हैं, तो आप जो आवास में छिड़कने का जो तरीका है उसको एक बार 5-7 दिन बाद फिर रिपीट कर दें। ऐसे 2-3 बार रिपीट अगर आप कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और आपके पशुओं के ऊपर जल्दी से नहीं आएंगे। ये क्या है, पशु को एक तो काटते हैं, दूसरा खून चूसते हैं, तो 2 तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। पशु ने जितना समय खाने में लगाया उससे दुगना समय उसको बागोल करने में, जुवाली करने में लगाना है। अब वो क्या है, जब परजीवी उसको काटते हैं तो अब कभी अपनी गर्दन को हिला रहा है, कभी पूंछ हिला रहा है, कभी पैर भटका रहा है, कभी रगड़ रहा है, कुचल रहा है, तो वो समय उसको वहां खत्म कर रहा है, जबकि उस समय उसको बागोल करना चाहिए,
1: हाँ।
0: तो सही आराम से बैठ के बागोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए पशु का उत्पादन कम हो जाता है और वो उसका खून भी चूस लेते हैं। तो इसलिए उनको पशुओं को भारी परजीवियों से बचाना बहुत जरूरी है। गर्मियों में देखते हैं कि उसकी जो मुलायम जगह होती है, जैसे गादी है, पूंछ के नीचे है, खुरों के बीच में, कानों के पीछे है, यहाँ उंगली लगाने जगह नहीं मिलती, इतने चिपके रहते हैं, तो हमें उनको मारने का प्रबंध करना है।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि भाई ये कुछ लक्षण है, जैसा वो पांव फटका जाए, पूंछ हिला हो जाए, तो फिर आपने समझ जानी चाहिए कि भाई परजीवी और
0: परजीवी है
1: का जी, लक्षण जी। चाहिए।
0: वैसे भी वो आंखों से दिख भी जाते हैं,
1: हाँ।
0: तो ये तो भारी परजीवी हुए,
1: हाँ।
0: ये होते हैं शरीर के अंदर, अब उनको सामान्य भाषा में कहते हैं पेट के कीड़े। ये 2-3 तरह के होते हैं, जैसे गोल कृमि है, फीता कृमि है, या हुकवर्म है, तो इस तरह के होते हैं। ये अगर आंखों से दिखते नहीं, ये पशु के शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में जब हो जाते हैं तो पशु जो है कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, उसके जो चमड़ी सूख जाती है, बाल खड़े रहते हैं और आंखों में गीड़ आते हैं, पानी गिरता है आंखों से। पशु का जो गोबर होता है वो पतला होगा और उसमें बदबू आएगी, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा है, उसके शरीर में कीड़े हैं, उन्हें भी हमें समय समय पर मारने का प्रबंध करना है। छोटे बच्चे बच्ची उनके वो पठारा पड़ जाते हैं जैसे,
1: हाँ।
0: तो वो क्या है कि पशुओं में एक तो रोग फैलाते हैं, पशु को अपन जो खिलाते हैं उसको वो खा लेते हैं अंदर से,
1: अच्छा।
0: और पशु की जो खून की हार्मोन्स की जो नली है उसमें वो गंदगी छोड़ते हैं, पशु के अंदर बीमारी फैलाते हैं। तो हमें उन्हें साल में कम से कम 3-4 बार उन्हें अवश्य मारना है, और उन्हें मारने के लिए आप हॉस्पिटल में या पेट में कीड़े मारने की दवाई ले ली है वहां से और उनको दे दें, तो वो उसमें बता देंगे कौन सी दवाई है, कैसे उसको लगानी है। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, अब जैसा गर्मी में मन क्या कर डिहाइड्रेशन हो जाओ, वैसा ही पशुओं का भी डिहाइड्रेशन हो जाओ, तो उसका काई लक्षण और काई समाधान करना।
0: डिहाइड्रेशन जब पशु को हो जाता है, पशु जो हाँपता है, बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, कमजोर हो जाता है, चर नहीं पाता है, तो वही उसको खनिज मिश्रण और नमक ये चीज उसको दें, और पानी उसको पर्याप्त मात्रा में, नॉर्मल पानी, जैसे गर्मी है तो गर्मी में नॉर्मल पानी उसको पिलाए, ट्यूबवेल का पानी होता है नॉर्मल ठंडा ही होता है, हैंडपंप का ठंडा पानी होता है वो ठंडा पानी उसको पिलाए, नमक और खनिज मिश्रण वो उसको पर्याप्त मात्रा में उसको दे। इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं वो प्रोबायोटिक्स उसको खिलाए, माइक्रोबियल फीड सप्लीमेंट जो है वो उसको खिलाए।
1: अब लू का काई लक्षण हो सके, कशा पे जाना कि भाई अब ढंडोर का लू लग गई,
0: पशु को जब लू लग जाती है तो पशु क्या है कि चारा पानी नहीं खाएगा, एक जगह शांत कहीं बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा, आदमी जब उसके पास जाएगा तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देगा, जो गोबर नहीं करेगा, तो कुछ सामान्य उसके लक्षण है, तो अपन को पहचानना है कि उसको जो हो सकता है लू लग गई। उसके शरीर का टेम्परेचर नापना, एक थर्मामीटर आता है जो 150-200 रुपए का आ जाता है, तो डिजिटल होता है, तो उसको पशु की पूंछ के नीचे जहाँ से वो गोबर करता है वहां लगा के और उसका टेम्परेचर भी नाप ले कि उसका टेम्परेचर कितना है। अगर उसका टेम्परेचर 102 से ऊपर है तो उसको बुखार है, तो तुरंत जो है उसका बुखार का उपचार उसको करवाना है। पशु का उत्पादन कम हो जाता है, तो ये सब चीजें देखनी है।

0: लार गिराता है, मुंह से लार गिराएगा, तो ये सब चीजें देखनी है, तो उसके बाद में उसका उपचार आपको करवाना है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे थे। अब जैसा कि आप आचार्य जो, तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर पशुपालन भयान के लिए ट्रेनिंग भी होती होगी, डेयरी व्यवसाय के लिए या कुछ और, तो आप किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ आकर।
0: मेरा किसान भाइयों को ये कहना है कि आप पशुपालन जो भी करते हैं, चाहे वो गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, कोई भी पशु हो, आप पहले उसकी ट्रेनिंग ले, उसका प्रशिक्षण ले।
1: हाँ।
0: तो कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर ये चलते रहते हैं।
1: हाँ।
0: आप कृषि विज्ञान केंद्र पर आए, अपना नाम पता लिखवा दे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे, जब भी ट्रेनिंग होगी आपको फोन करके बुला लेंगे कि इस समय ये ट्रेनिंग होने वाली है, आप आ जाए। तो लगभग 2-3 महीने में एक ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पर बकरी पालन की ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं, और गाय भैंस के लिए उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। वर्मी कंपोस्ट है, मुर्गी पालन है, डेयरी व्यवसाय, इसकी हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो और हमारे साथी लोग है कृषि विज्ञान केंद्र के, वो खाद्य प्रसंस्करण एवं वैल्यू एडिशन उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। कोई खाद बीज की दुकान खोलना चाहता है उसकी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। कोई मशरूम की इकाई लगाना चाहता है उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। वर्मी कम्पोस्ट इकाई लगाना चाहता है उसकी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कोई करना चाहता है उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस तरह की हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पर करवाते रहते हैं। और कोई उद्यान लगाता है, बगीचे लगाता है, या कोई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, या पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, इस तरह की कोई करना चाहता है उसकी भी हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो हमारा काम जो है ट्रेनिंग का है, आप लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। किसान बहन भाइयों, यहाँ पर समय समय पर ट्रेनिंग दी जाओ जो, तो आप लोग पधार कर यहाँ पर पशुपालन कशा रखा, डेयरी व्यवसाय कशा करा, और ये सारी बातें बताए, यहाँ की ट्रेनिंग ले सको जो। और अंत में किसान बहन भाई जो आपकी बात सुन रहे थे, वहाँ आपका ही संदेश देखो चाहो।
0: मेरा संदेश यही है कि जैसे हम अपना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे पशुओं का भी हमें ध्यान रखना है। गर्मी में गर्मी से बचाना है, हरे चारे की पूर्ति करनी है, खनिज मिश्रण देना है, नमक देना है, पशु आहार देना है। तो यही मेरा आप लोगों को संदेश।
1: डॉक्टर घनश्याम मीणा जी, आचार्य पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा, आपने माँ कथा अति बढ़िया जानकारी दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम साहब।
1: किसान बहन भाइयों, देखो कत्ती बढ़िया जानकारी छी ना, कि आपन कहते हैं अपना ढांढोरा की देखभाल कसा करनी चाहिए जे, वहाँ का रोगां कहते हैं अपन कसा पहचान सके छा। और बहन भाइयों, आज आपन एक और दिवस मना रहा छा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। बहन भाइयों, आप लोगों ने अस्पताल में सफेद वर्दी में नर्साता ही देखे होगो, कोई बोतल लगाते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए, दवाई गोली देता हुआ, पट्टी बांधता हुआ, ये सब काम करता हुआ आपने नर्स कताई देखे होगो। नर्स एक सफेद वर्दी में देवदूत छ, जो आपन कताई अपनी सेवा करे छ और कठिन समय में हमेशा अपने साथ खड़ी रहे छ। और बहन भाइयों, नर्सिंग एक नौकरी कोई ना बल्कि मानवता की सेवा को एक हिस्सा जाए। नर्स मरीजा की 24 घंटा देखभाल कर जाए। नर्स स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी हो जाए। नर्स मरीजा कताई भावनात्मक सहारो दे वजह, आपातकालीन स्थिति में जीवन बचावा में मदद करे जाए। और एक डॉक्टर दवा लिखे जाए, लेकिन नर्स उ दवा कताई प्यार और मरीज की देखभाल से उको असर कर जाए। तो बहन भाइयों, नर्स को काम सेवा भाव और समर्पण को छ, वह मरीजान का जो घर वाला छ वहाँ कताई भी बहुत अच्छी तरीका से समझाओ जाए कि भाई कसा दवाई लेनी चाहे, कसा देखभाल करनी चाहिए, ये सब बातों को वो बताओ जाए। तो बहन भाइयों, आज को दिन नर्सा को सम्मान करवा को और धन्यवाद देवा को छ। आज का दिन नर्सा का सम्मान में कई कार्यक्रमों को आयोजन करो जावे छ। बहन भाइयों, मंडी भाव आप आ चुके छे, आप लोग आते हैं आज का मंडी भाव बता देवा। गेहूं को भाव रहो 2331 रुपया से लेकर 2644 रुपया। सरसों को भाव रहो 6351 रुपया से लेकर 7202 रुपया। सोयाबीन को भाव रहो 6401 रुपया से लेकर 6935 रुपया। और धान को न्यूनतम भाव रहो 3791 रुपया से लेकर 4511 रुपया। और धनिया को भाव रेवचन 9501 रुपया से लेकर 14811 रुपया। मेथी को भाव रेवचन 5600 रुपया से लेकर 6599 रुपया। चना को भाव रेवचन 4911 रुपया से लेकर 5380 रुपया। वहीं मक्का को भाव 1700 रुपया से लेकर 1992 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को भाव रेवचन 6201 रुपया से लेकर 7002 रुपया और लहसुन को भाव रहो 6100 रुपया से लेकर 14200 रुपया प्रति क्विंटल। बहन भाइयों खाल को कार्यक्रम में आप सुन

गंगा खाल बुधवार छे और खाल सजीव फोन इन कार्यक्रम होगो, तो सजीव फोन इन कार्यक्रम को विशेष है खाल को गर्मी में पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं टीकाकरण। विशेषज्ञ होगा डॉक्टर जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कोटा। जो भी किसान बहन भाई सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर बुझाव तो ई टेलीफोन नंबर पर बात कर सकते। टेलीफोन नंबर छ 0744-29-4-11-42। ई नंबर पर आप खाल बुधवार का दिन शाम की 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक फोन कर सको जो। और बहन भाइयों कार्यक्रम को समय हो रहे छे, आप ते माहू कार्यक्रम का शुक लागत छे, चिट्ठी पत्रिका माध्यम से अवगत कराओ। तो पतो नोट करो, चौपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कोटा, पिन संख्या 324001। मेल भी कर सको छो enjoyairkota@gmail.com। बहन भाइयों एक कार्यक्रम की प्रस्तुति री तेजराम मीणा की और संयोजन रो हिमांशु नामा को। अब संतोष बनाने दो आ गया, चल जा, राम राम।

चौपाल कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा बूंदी से प्रसारित किया गया। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 KHz पर। अब आप हमारा प्रसारण प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर देश दुनिया में हर जगह सुन सकते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की ये पहली रचना सुनिए, बनारसी बाबू के स्वर में।

अभी आपने बनारसी बाबू के स्वर में एक पारंपरिक राजस्थानी लोक रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं लंगा और मांगणियार गायक कलाकारों से ये रचना।

लोक संगीत कार्यक्रम जारी है और इस दौरान आइए कुछ स्थानीय सूचनाएं आपको दे दें। कल हमारे 13 मई के दो कार्यक्रम होंगे, इनमें से साय 7 बजे से 7:30 बजे तक चौपाल कार्यक्रम होगा। इसमें लाइव फोन इन प्रोग्राम का विषय है गर्मी के मौसम में पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और टीकाकरण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कोटा से। और आरोग्यवाणी कार्यक्रम में कल सवेरे 8:15 पर विषय है पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बी एल गोचर। इन दोनों कार्यक्रमों में फोन पर आप हमारे विशेषज्ञों से संवाद करने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। फोन नंबर है 2941142214142। इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 जरूर मिलाएं। आइए लंगा और मांगणियार गायक कलाकारों से सुनते हैं एक और लोक रचना।

अभी आप लंगा और मांगणियार कलाकारों से राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, थोड़ी देर में सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

आइए प्रोग्राम का ये पहला गाना सुनवाते हैं अमिताभ बच्चन, उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी और साथियों की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

आइए अब सुनते हैं चित्रा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में परदेश फिल्म का एक गाना। आनंद बख्शी की गीत रचना को संगीत से संवारा नदीम श्रवण ने।

चंबल चैनल पर आप सुनते हैं अपना पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी। इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के लिए वक्त वही मगर दिन बदल गया। अब शुक्रवार की जगह एक दिन पहले गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक आप करवा सकेंगे इस प्रोग्राम के लिए अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग और सुन सकेंगे अपने पसंद के गीत उसी समय यानी शनिवार रात 9 बजे से 10 बजे तक। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के लिए फोन नंबर भी वही है 29411 42 एसटीडी कोड 0744। याद रखिएगा टेलीफोन नंबर 2941142 एसटीडी कोड 0744। और दिन जरूर याद रखिएगा गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक हमें रहेगा आपका इंतजार।

आइए सुनते हैं अभिजीत, अनु, श्रीराम और साथियों के आवाजों में विरासत फिल्म का ये गीत। गीतकार जावेद अख्तर हैं और संगीतकार अनुमल।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के प्रिय श्रोताओं, आपके दिल की धड़कनों को छूने के लिए एक बार फिर से आ रहा है वही प्रोग्राम जिसका नाम तो याद ही होगा आपको, रात के सुकून भरे पलों में काव्य संगीत और अल्फाज की अदायगी से आपकी धड़कनों को महकाता हुआ कार्यक्रम रात रानी के फूल, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर रात रानी के फूल। अब ये कार्यक्रम सुनिए अपने बदले हुए दिन यानी रविवार को रात 9 बजे

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण तथा साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। संगीत है जतिन ललित का, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओ, चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। कुछ बेहतरीन गाने और आपके लिए प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कुछ सूचनाएं सुन लीजिए। आरोग्यवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल बुधवार सवेरे 8:15 पर, और इसका विषय है पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बीएल गोचर। इसी तरह कल सायं 7 से 7:30 तक हमारे केंद्र से चौपाल कार्यक्रम में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विषय है गर्मी में पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और टीकाकरण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जयप्रकाश मीणा। दोनों कार्यक्रमों के लिए फोन लाइन का नंबर है 2941142, और इससे पहले एसटीडी कोड आपको मिलाना होता है कोटा शहर का 0744। दोनों फोन इन कार्यक्रम में, इन दोनों कार्यक्रमों में आप विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं प्रसारण के समय इस नंबर पर फोन करके।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज़ ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो

सोनू निगम और जावेद अली की आवाजें, इरशाद कामिल की रचना, संगीत प्रीतम ने दिया, फिल्म जब वी मेट। सुनिए ये गीत।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये है चंबल चैनल। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 1 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीति स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता

हिमंता बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर सरमा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री सरमा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की

0: बैंक के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया।

है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR पर अब देश दुनिया में हर जगह है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम नारायण का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने आशा भोंसले, अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह, आरती मुखर्जी और साथियों के स्वरों में परवरिश फिल्म का गीत सुना। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए प्रोग्राम में अब सुनते हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अमर अकबर एंथोनी फिल्म का एक गीत। आनंद बख्शी की गीत रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर। लीजिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं सुनिए। श्रोताओं, कल 13 मई को सवेरे 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम होगा आरोग्य वाणी। स्वास्थ्य की जानकारियों पर आधारित इस कार्यक्रम का कल का विषय है पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बी एल गोचर। इसी तरह कल शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल होगा। इसका विषय रहेगा गर्मी में पशुओं की सुरक्षा और टीकाकरण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जयप्रकाश मीणा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कोटा। इन दोनों कार्यक्रमों में आप अगर हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन संवाद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायल करें 2941142, एसटीडी कोड 0744। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त होती हैं। इस समय हमारे केंद्र से जारी है कार्यक्रम

संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है लावारिस। अनजान की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

अभी आपने मजरू सुल्तानपुरी का गीत सुना। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में फिल्म थी लैला मजनू, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना। एसएच बिहारी की गीत रचना को संगीत से संवारा है ओपी नायर ने।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजें फिल्म प्रेम रोग में। संतोष आनंद की गीत रचना और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं ये आवाजें थी अनवीशा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब साबरी और साथियों की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में। गीतकार इरशाद कामिल और इसका संगीत तैयार किया था हिमेश रेशमिया ने। आज के प्रोग्राम के लिए गीतों का चयन और प्रस्तुति राम नारायण मीणा की। अब अपने रेडियो साथी को आज के इस प्रोग्राम से अनुमति दीजिए। नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब अगले प्रोग्राम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा।

प्यार झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहां तक धरती है वहां तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झरते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। गहराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन की नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर, सप्तक, आरोह अवरोह और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है खामोश अफसाना, पर शोर के इस दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देखकर मुस्कुराकर बतकही चढ़ती थी। सब कुछ तो है पर नहीं है बहुत कुछ जिसकी है चाहत।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में वो नफरत के चिंगारे से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झूम के चले तो दिल पे

0: वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी
1: हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी।
2: अरे होंगे

0: अभी आप विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य

0: साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said,